0: तो आनंद बख्शी और आरडी मर्मन से आगे बढ़ते हैं जावेद अख्तर और शिव हरी की तरफ। अनीता बालाजी की ये पिछली फरमाइश थी, अगले मोड़ पर है फरमाइश अर्पिता की, यानी कि आरजे अर्पिता की। ये सिलसिला कुछ पुराना सा है और कहा जाता है कि सामान बांध लिया है मैंने भी, अब बताओ दोस्त। सामान बांध लिया है मैंने भी, अब बताओ दोस्त, वो लोग कहाँ रहते हैं जो कहीं के नहीं रहते। लीजिए सुनिए फिल्म सिलसिला का ये गीत लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में, ये कहाँ आ गए हम।
1: मेरे ख्यालों के हम सफर।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत।
1: बहुत ही खूबसूरत फरमाइश अर्पिता जी, ऐसे जैसे कि मैं बहक ही गया इस गाने में। इट्स जस्ट सच अ वेल डन सॉन्ग एंड यू नो द वे अमिताभ बच्चन स्पीक्स इन दिस सॉन्ग इज जस्ट अनबिलीवेबल। चलिए अगले मोड़ पर आपको के से थोड़ी देर, के पे हम लोग थोड़ी देर तक अटके रहते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है और गाने भी ज़्यादा हैं, पर कोई बात नहीं। थोड़ा एक 1966 का गीत आए दिन बाहर के का सुनाता हूँ आपको, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक और लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़। आज की थीम ये वर्ड से है और इस बार हम लोग के पे अटके हुए हैं, तो अब 3-4 गानों तक के पर अटके रहेंगे क्योंकि के से बहुत सारे गाने हैं। और जैसे सब्जेक्ट में, जैसे इस बार सब्जेक्ट है कली, तो देखिए

0: करो।
1: आपको बेकरार होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम के पे ही फंसे हुए हैं और के से काफी सारे गीत हैं जो कि ये से शुरू होते हैं। हुआ ये कि सुबह हुई और श्रीमती जी के साथ गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने पूछा, भाई आज का थीम क्या है? तो मैंने कहा दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा ठीक है फिर यही थीम बना देते हैं। जी हाँ, सारे गाने ये से शुरू हो रहे हैं और अगले मोड़ पर मेरे हाथ कुछ बंधे हुए हैं। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने बांध दिए हैं, लता मंगेशकर का गीत है, राहुल देव बर्मन का म्यूज़िक। और अगर आपने बंधे हाथ नहीं देखी है तो मुमताज़ को कैसे आप अप्रिशिएट करेंगे? इस गीत में उन्होंने क्या डांस किया है, लीजिए सुनिए। पर सुनने से पहले ये जान लीजिए कि चुराना तो हमेशा उनकी फितरत रही है, चुराना तो हमेशा उनकी फितरत रही है। कभी दिल चुराया था, अब नज़र चुराते हैं।

राहुल देव बर्मन साहब की आदत थी कि वो विचित्र विचित्र इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे अपने म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस में, और बंदे हाथ के इस गीत में आपने कई सारे ऐसे साउंड सुने होंगे जो कि कोई नॉर्मल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा निकाल सकता है। चलिए राहुल देव साहब बर्मन साहब के और लता मंगेशकर से आगे बढ़ते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की ओर। इस बार म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने और बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने। 1973 की फिल्म थी बंदे हाथ, उससे आपसे आपको 10 साल पीछे ले चल रहा हूँ 1963 की तरफ। फिल्म का नाम था मेरी सूरत तेरी आँखें, और हम जिंदगी के गीत सुना रहे थे, हम गमों के तराने गा रहे थे, खींच रही थी बंदिशें हमें बार बार, हम फिर भी बे इंतहा मुस्कुरा रहे थे। इस गीत को सुनकर आपके मुंह पे मुस्कुराहट जरूर आएगी।

तो दोस्तों ये तो ख़त्म हुआ के का सिलसिला, पर आपको एक बार वापस जी पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है डी जुच्छी से, जो कि हमारी बहुत ही खूबसूरत आरजे हैं और इतने अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं वो शाम को। इनफैक्ट अगर आप ठहरिएगा 9 बजे के बाद तो उन्हीं का प्रोग्राम शुरू होगा। प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक है, और जी हाँ जी में मैंने इस गाने को नहीं बजाया था, एक और गीत बजाया था, पर देर आए दुरुस्त आए, लीजिए सुनिए।

तो दोस्तों ये तो था प्रेम रोग का खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। गलियों से याद आया कि ढूंढता हूँ तेरी गलियों से अपने गुजरे हुए कल को, ढूंढता हूँ तेरी गलियों से अपने गुजरे हुए कल को, एहसान मंद हूँ अगर लौटा सके किसी एक गुजरे हुए पल को। अब इत्तेफाकन बात ऐसी हुई कि उन गलियों में एक मैखाना भी था और मैखाना की इज्जत का सवाल था। हुजूर सामने से गुजरे तो थोड़ा सा लड़खड़ा दिए, जैसे कि राजेश खन्ना प्रेम नगर में। जी हाँ, वापस एल की तरफ चलते हैं। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा।

अब आप कहेंगे कि आपको गमगीन कर दिया और आप शहर छोड़ के जाने वाले हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम बदलने वाला है। एल से एम की तरफ आएंगे तो वक्त के साथ साथ कैसे चलना है तुमको, मौसम से सीखो कैसे बदलना है तुमको। लीजिए सुनिए एम से मौसम।

अब ख्वाबों ख्यालों में आपको खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने देखा, जैसे आनंद बख्शी साहब ने फरमाया कि आंखों का मिलना खूब रहा है, ये दिल दीवाना डूब रहा है, मतवाले नैनों के इन शरबती नरगिसी प्यालों में आ जा, खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। तो नैनों से तो अगला गीत होना ही चाहिए, क्योंकि इस गीत में आपको बहुत लुत्फ आएगा। हेमंत दा का गीत, फिल्म थी कोहरा।

हाँ, कैफी आजमी साहब कमाल कर गए इस गाने में। जी हाँ, सुधीर मतानी और राज कार्निक साहब को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब भी कोई थीम आती है, फटाफट उनके गाने आ जाते हैं और लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। परंतु ये पे ओ से कोई गाना नहीं मिला, तो सीधे पी की तरफ चलते हैं। इस बार फिल्म का नाम है वासना, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी। चित्रगुप्त ने इसका म्यूजिक दिया था और ये गीत जो है रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर के साथ गाया था।

बहुत ही खूबसूरत नगमा। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है, हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ, पी से क्यू स्किप करके आर की तरफ। शीला मेहता ने इसकी फरमाइश की थी और बात हो रही है जुल्फों की, कि खुदकुशी करने से मुझे कोई परहेज नहीं, बस शर्त इतनी है कि फंदा तेरे जुल्फों का हो। लीजिए आर से रेशमी जुल्फें।

तो दोस्तों ये तो रहा आज का सफ़र, आखिरी पायदान आ गई है और हमारी जर्नी ख़त्म होने वाली है एस पर फिर कभी शुरू करूंगा और बाकी गाने आपको बजाऊंगा, क्योंकि जैसे सुधीर भाई ने बताया मुझे बहुत सारे गाने हैं, 3-4 शो हो सकते हैं स्टार्टिंग विद दिस वर्ड ये। तो अब जाना मैंने ज़िंदगी क्या है, सफ़र में भी हूँ लेकिन जाना कहीं नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, मुझे तो घर जाना है, पर 1942 अ लव स्टोरी के इस गाने के बाद, जो कि एस यानी कि सफ़र, ये सफ़र कठिन है बहुत।

0: दिस इज भारत एफएम।
1: बचेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: हेलो हेलो हेलो हम सफर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, किंचो वनकम सलाम। हम सफर शो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपकी जिंदगी के बिजी सफर को म्यूजिकल बनाने के लिए आ गई हूँ एक बार फिर मैं, यानी कि आपकी प्यारी सी होस्ट हम सफर और हमराही RJD। आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम मेरी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुशियों की बातें करेंगे। मगर इससे पहले कि मैं आपसे बातें करने की खुशियों में डूब जाऊं, आप फटाफट एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाइए, अपने डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ाइए और बन जाइए मेरे हमसफर।

सफर्स, आज के इस शो पर हम खुशियों की बातें करेंगे, अपनी जिंदगी में छोटी मोटी खुशियों के पल ढूंढेंगे और उन खुशियों को एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। तो तैयार हो जाइए एक और मस्त जबरदस्त सफर के लिए मेरे यानी आरजे डी के साथ भारत एफएम पर। तो आज के हमारे इस सफर का टॉपिक है खुशी के पल।

जी हाँ, मैं जानती हूँ कि आज के खुशियों वाले एपिसोड का आगाज मैंने थोड़ी नॉन खुशी वाले गाने के साथ किया। इस गाने में खुशी ढूंढी जा रही थी, इसलिए मुझको आज के ओपनर के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगा। मगर आगे तो मैंने आपके लिए खुशियों को हर तरफ बिछा के रखा है, क्योंकि हमसफ़र्स जिसके दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और हमसफ़र्स ही हमसफ़र्स हों, वो खुशी से तो दीवाना हो ही जाएगा ना।

सुन रहे हैं भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत, और मैं हूँ आप सबकी कंपनी को एंजॉय करके खुश होती हुई आपकी RJD। सच हम सफर्स हर हफ्ते आपसे मिलकर मुझको जो खुशी और सुकून मिलता है उसको मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मगर ये जो अगला गाना है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से मेरी इस बात को बयां कर रहा है।

0: The Lotus Event Center is the perfect space for your social and corporate events. We have cozy space for baby showers, birthdays, bridal showers, and other personal family events. At the same time, have the ability to host business meetings, podcast taping, launch events, and company gatherings. Our multifunctional space offers an open vendor policy, special buffet area, audio-video equipment, DJ services, tables and chairs, linens, and is centrally located at 9145 Cincinnati Columbus Road in Westchester, Ohio, and offers ample free parking next to the facility. For more details, reach Lotus Event Center at 513-488-5070. Use our space to make it your place for every occasion.
1: वेलकम बैक। आप सब लिसनर्स आज मेरे हम सफ़र बनकर मेरे और शो के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबका दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, हम सफ़र जब हमारी ज़िंदगी में किसी के प्यार से भरी हुई प्रेजेंस होती है, तब जिंदगी कितनी खुश खुशहाल और रोज़ी हो जाती है ना? और अगर उस इंसान का साथ हमको सारी ज़िंदगी के लिए मिल जाए तो बस वो खुशी तो सातवें आसमान तक पहुंचाने वाली होती है।

वेलकम बैक। आप हैं मेरे साथ यानी आपकी हम सफरर आरजेडी के साथ भारत एफएम पर। भारत एफएम साथ है तो लाइफ में कुछ बात है। अच्छा हम सफर्स, हमको अपने लव ऑफ आर लाइफ का साथ तो मिल गया, तो उसके बाद क्या? मैं बताती हूँ, उसके बाद तो हर खुशी हर गम बस उनके साथ ही जुड़ जाता है। वो ना खुश हो तो हम भी ना खुश, और वो खुश हो तो हम उससे भी डबल खुश।

0: Hello listeners and gorgeous people out there. Did you know that eyebrows are the most expressive part of our face and the shape of your eyebrows can predict your personality? Here is another interesting fact. You should shape your eyebrows opposite to the shape of your face, and yes, you can get it for free. Book your facial today at Feather Touch Salon located in Mason and get your eyebrows shaped absolutely free. Treat yourself to a great ambience and rejuvenating experience at Feather Touch with their all-natural organic facials, waxing and eyebrow threading services. Just mention Bharat FM to redeem this offer. Call us today at 513-492-7562.
1: Welcome back. अच्छा हम सफर्स, मुझको पता है कि ये खुशियों वाला एपिसोड है, मगर आप सब इतना तो मुझको जानने ही लगे हैं कि आपको पता है कि मैं खुशियों के मोड में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती हूँ। तो आपको ये अगला गाना सुनाती हूँ जिसमें दूसरों को खुशियों की दुआएं देते हुए अपने गम को स्वॉलो किया जा रहा है, और ये सेंटिमेंट पर्सनली मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं भारत FM। अगर आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो एडवर्टाइज कीजिए भारत FM पर। यू कैन ईमेल अस एट info@bharatfm.com। अपनी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में आप भारत FM को अपना पार्टनर जरूर बनाइए।
1: दिस इज भारत FM।
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
0: अच्छा, हम सफर्स कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत अरसे तक अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपना प्यार खुलकर जाहिर नहीं कर पाते हैं। मगर जिस वक्त वो मोमेंट आता है जब सारे स्टार्स अलाइन हो जाते हैं और हमको अपना दिल खोलने का मौका मिल जाता है, वो मोमेंट, वो लम्हा कितना खुशी से भरा होता है ना? जस्ट प्योर हैप्पीनेस।

वेलकम बैक। अच्छा, हम सफर्स बहुत सारी सेल्फ हेल्प टाइप की बुक्स में लिखा होता है ना कि हैप्पीनेस इज और शुड बी आवर अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइव्स। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या नहीं? मुझको तो लगता है कि खुशी को अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से अपनी जिंदगी में इनवाइट करना चाहिए, ना कि उसके पीछे पीछे भागने की जरूरत पड़े। किसी शायर ने कहा है ना, ना खुशी अच्छी है ए दिल, ना मलाल अच्छा है। ना खुशी अच्छी है ए दिल, ना मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है।

0: खुश रहे।
1: वेलकम बैक। अच्छा हम सफर, ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी में खुशियां सिर्फ रोमांटिक लव से आए। इस दुनिया में कितने सारे और भी तो रीजंस हैं बे इंतहा खुश होने के। अपने जॉब में प्रमोशन मिल जाए, अपने बच्चे को स्कूल में कोई प्राइज मिल जाए, या हमारी किसी फ्रेंड की लॉटरी लग जाए, या फिर हमको बोरिंग से ऑफिस की कम्यूट में एक सुंदर सा रेनबो दिख जाए। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि ये जिंदगी तो छोटी बड़ी खुशियों से भरी हुई है।

0: Hey there, are you still drinking regular water? Did you know that during clinical studies, alkaline water has shown to have superior hydration benefits versus regular water? These studies also indicate that an alkaline environment within the human body is optimum for the functioning of the immune system, making the body more resilient against stress, toxins, and viruses. Introducing Pani, a high pH alkaline water made in Hamilton, Ohio. Pani uses natural limestone filtration, unlike the artificial process that most other brands use. The result is a healthy alkaline water that is also the best tasting water in the world. Visit paniwater.com to locate retail outlets near you to stock up this great tasting water.
1: Welcome back. आपके कम्यूट के सफर की सफरिंग को थोड़ा कम करने के लिए आपके साथ हूँ मैं आरजे डी और आप सुन रहे हैं भारत एफएम पर आपका और मेरा फेवरेट शो हम सफर। अच्छा हम सफर, जब हम किसी अपने को सफर करता हुआ देखते हैं तो अपने आप ही हम उनके गम में शामिल होना चाहते हैं और अपनी खुशियों को भी थोड़ा डायल डाउन कर देते हैं। उस टाइप की इमोशनल केमिस्ट्री कुछ कम ही देखने को मिलती है, मगर जुबिन नौटियाल की ड्रीमी आवाज़ में इस अगले गाने में इन सेंटिमेंट्स को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। चलिए सुनते हैं।

वेलकम बैक। मैं हूं आपकी आरजेडी और आप सुन रहे हैं भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। मेरा काम है आपके और मेरे जिंदगी के स्ट्रेसफुल से सफर को आसान और म्यूजिकल बनाना, और आपका काम है मेरे म्यूजिकल हम सफर बनकर मेरे साथ चलते रहना। और हाँ, अपने गानों की फरमाइशें मुझे जरूर भेजते रहिए, क्योंकि आप तो जानते ही

आज के इस खुशियों से भरे हुए म्यूजिकल सफर पर मुझे तो आप सबके साथ बहुत मजा आया, मगर आपका और मेरा आज का साथ बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक पर खूब सारी गपशप करेंगे। बस आप अपने पसंदीदा गानों की और टॉपिक्स की फरमाइशें मुझे भेजते रहिए info@bharatfm.com पर, या फिर मुझे टेक्स्ट कीजिए 5134885070 पर। मैं आज का शो एंड कर रही हूँ एक ऐसे क्लासिक गाने से जो आप सब भी जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक क्यों नहीं प्ले किया। वेल, हियर इट इज। इस जिंदगी में कभी खुशियां आती हैं और कभी गम। ये गाना बहुत ही खूबसूरती से ये बात हमको याद दिलाता रहता है। आई होप यू लाइक इट टू। मैं हूं आपकी RJD और आज के लिए गुड बाय। अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में खूब संभाल कर रखिए और हर हफ्ते भारत FM पर मेरे हमसफर बने रहिए।

आज गावत मन

0: दोस्तों क्रिसेंडो हो तो ऐसा उस्ताद आमिर खान और डीवी पालुस्कर की आवाज़, शकील बदायूं ने के बोल, नौशाद का म्यूज़िक और फिल्म का नाम था बैजू बावरा, जो कि 1952 में रिलीज़ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही पंडित डीवी पालुस्कर हैं, बेटे थे विष्णु दिगंबर पालुस्कर के, जो कि ग्वालियर घराने के बहुत ही फेमस नेम हैं और गंधर्व विद्यालय के फाउंडर हैं। पर देर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक बहुत ख़ास गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, जिन्होंने आज की गीतों की माला पिरोई है। कार्निक साहब, वेलकम टू फरमाइश।
1: थैंक यू अमित जी, और मेरे पास से आपके संगीत प्रेमी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू डू दिस टुडे।
0: तो राज, द सॉन्ग दैट आवर लिसनर्स वर लिसनिंग टू बिफोर वी ट्रांजिशन टू फरमाइश वाज संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। ये मुकेश और लता जी का गाना था। तो उसमें दो लाइनें हैं कि एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है। तो आप इसी कुछ इसी सेंटिमेंट को लेके आपने ये प्रोग्राम बनाया। हाँ,
1: तो द फर्स्ट थिंग वी शुड डू अमित जी इज टू एक्सप्लेन आपके दर्दियों को कि व्हाट इज सरगम। आई मीन दिस मे साउंड वेरी चाइल्डिश टू योर लिसनर्स, बट इट्स गुड वे टू स्टार्ट to say ki what is really the meaning of sargam. So sargam is really an acronym. Jaise aapko sabhi ko pata hai ki the names of the notes or names of the swar in Indian classical music is shadaj, which is often referred to as sa, then comes rishab or re, then comes gandhar or ga, ma is madhyam, P is pa is pancham, then dha is dhaivat, and nishad is ni. And then the cycle begins repeating again with the higher octave.
0: पर ये सरगम, एक मिनट राज, ये सरगम वर्ड में ये पधनी क्यों गायब हो गया? सारे गम तो है
1: पर वो ठीक लगता नहीं है ना। आई मीन सरगम इज अ वर्ड व्हिच इज सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड इन आवर हेड्स। आई एग्री विद यू। हां, but that is sort of the real meaning of sargam, and the songs that I chose today have all at least some part of it a sargam is included, and we can explore this as we go along the route of many other beautiful songs that have been selected. I do hope that the listeners enjoy this journey as we move along.
0: तो आपने जो पहला गीत ये सेलेक्ट किया, अब दूसरे गीत की तरफ चलते हैं, और आपने फिल्म गाइड से ये गीत लिया है, और इसमें जो है संया बेईमान जो है छल किए जा रहा है, तो उस पर एक शेर याद आया है, अगर आप कहें तो फरमाओ।
1: जरूर प्लीज।
0: कि मुकम्मल हो नहीं पाया हमारे प्यार का नगमा, कि मुकम्मल हो नहीं पाया हमारे प्यार का नगमा, कि जब सुर ही नहीं मिले तो सरगम कहाँ से बनती।
1: बहुत ही खूब, बहुत
0: तो खूब। पर इस अगले गीत में तो काफी अच्छी सरगम बनाई है आर डी बर्मन साहब ने,
1: एसडी बर्मन साहब ने। तो देखिए, आपको तो पता है कि करने की गाड़ी बिना गाइड के आगे बढ़ती नहीं, जैसे कि वो पावर हाउस ही हो गया फॉर एनी ऑफ माय सॉन्ग्स। सो देयर आर सेवरल थिंग्स आई'ड लाइक टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग। आई मीन नीडलेस टू से लता मंगेशकर सिंगिंग इज एब्सोल्युटली ऑसम इन दिस, बट देर आर टू सॉन्ग्स बैक टू बैक इन गाइड। वन इज दिस मोसे छल किए जाए, विच इज फॉलोड इमीडिएटली देर आफ्टर बाय कैसे क्या हो गया। एंड बोथ दीज सॉन्ग्स आर वेरी डिफरेंटली ट्रीटेड, बट दे आर फ्रॉम द सेम राग, विच इज राग झिंझोटी। थोड़ा सा फर्क किया है, एंड दिस इज रियली द जीनियस ऑफ एस डी बर्मन कि हाउ कैन ही एक्सप्रेस टू सेपरेट इमोशंस in the same rag, and that tells you that just because the notes are same or the rag is same, two different singers or two different composers may create completely different moods with the same rag. Dusri baat ye kehna chahta hu ki in this song there's one sequence I'd like everybody to focus on, एंड दैट इज व्हेन लता मंगेशकर सिंग्स हाय रे हाय हाय हाय, देयर इज अ ब्रेक इन द ताल एंड दैट लुक दैट वहीदा रहमान गिव्स इज यू नो वन ऑफ डिसडेन ऑफ utter contempt and disgust is so well brought out by that little break in the taal, which is amazing to me. Let alone, you know, all the sitars and the ghungru and everything else that goes. It just is one of the best songs that you can ever create. It is meaningless to talk about loss of an award when you have such quality music.
0: आप Filmfare Award की बात कर रहे हैं? तो चलिए एस डी साहब को फिल्मफेयर अवार्ड तो नहीं मिला, पर देखिए कि एक तरफ तो वो सैयां बेईमान बोल रही हैं और दूसरी तरफ वो बोलते हैं क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में हो। चले लेट्स एंजॉय दिस लवली नंबर।

0: तो दोस्तों, ये तो गीत खुद ही शायरी था। शैलेंद्र साहब के बोल थे कि मुझसे छल किए जाए देखो सैया बेईमान। चलिए अगले मोड़ पर। कार्निक साहब, आपने क्या हमारे लिए बचा के रखा है, पर मैं आपको ये बता दूं कि इस गीत की फरमाइश शिकागो से आई है। अनीता बालाजी ने की है इस गीत की फरमाइश।
1: ओ दैट जब दीप जले आना फ्रॉम कौन सी मूवी थी ये?
0: चिचोर से
1: अनीत
0: था
1: चोर की मूवी थी। हाँ, तो
0: और
1: ये गाना तो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड यमन राग पर बेस्ड है। एंड इन दिस राग देर इज दिस निरेगव सीक्वेंस विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यमन राग। तो ये बताना चाहता हूँ कि यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सारे गम द नोट्स ऑफ अ राग टू एक्सप्लेन द फेस और शो द फेस ऑफ द राग इज अ यूनिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सेप्ट। अगर आप दूसरे म्यूजिक जानरा में देखिए तो नो बडी एल्स एक्सेप्ट फॉर परहैप्स द सॉन्ग डोरे मी यू नो फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक आई डोंट नो ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ म्यूजिक विच यूटिलाइजेज नोट्स एज वर्ड्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द मेलेडी। तो इन द फर्स्ट प्लेस आई फील दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर विच इज यूज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड नोट इज प्रॉबली नॉट द मोस्ट बेस्ट डिस्क्रिप्शन बिकॉज बियॉन्ड द नोट देर इज ऑलमोस्ट एन इमोशन दैट इज एंडाउड विथ ईच ऑफ दीज नोट्स। सो इट्स अ लॉट मोर देन अ नोट। The other thing I wanted to talk about, Amit, is that many a times in different genres of music, the vocalization with vowels like a, e, u, o is very common, but the use of swar in music is not. Now, most of the time when this is used in classical music, it is used to show the face of the rag. But in Hindi music or in film music, many a times there are places where the sargam that is used has no bearing on the basic melody of the song. But in the next song that we are going to see, this is pure Yaman, and we are going to listen to that.
0: तो यमन की ये खासियत है, नी रे गा रे गा, जो कि इस गीत में है, और रविंद्र जैन साहब ने खूब अच्छी तरह से एक्सप्लॉयट किया इस गाने में उस राग को।
1: जी हाँ,
0: चलिए, बासु चैटर्जी की मूवी चिच्चोर 1976 की मूवी थी, उसका ये गीत सुनते हैं अनीता बालाजी की रिक्वेस्ट पर।

0: तो दोस्तों ये तो थे येसुदास और हेमलता राग यमन में, रविंद्र जैन का संगीत, और राज बहुत ही खूबसूरत गीत है। अच्छा, इस चिच्चोड़ में एक और राग पीलो में भी गीत था जिसकी फरमाइश आई है चंपा भारद्वाज से, वो थोड़ी देर में हम सुनाएंगे ज़रूर श्रोताओं को। पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इस बार एक बहुत गहरा फलसफा मैं देने वाला हूँ अपने श्रोताओं को।
1: बताइए।
0: तो कानिक, हम जब शुरू में कॉलेज में बड़े हो रहे थे तो कहा जाता था कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक तो होते हैं कस्टर्ड और एक होते हैं मस्टर्ड। तो कस्टर्ड जो थे वो सुनते थे बीटल्स को और नील डायमंड को, और मस्टर्ड जो थे वो सुनते थे बड़े गुलाम अली खान और किशोर कुमार को। तो बहुत फ़र्क था इन दोनों जानराज में। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं हर प्रोग्राम के दौरान अपनी बीवी से ज़रूर पूछता हूँ, अनीता जी से, कि भाई कोई गाना है अगर तो बताओ। तो आप बताइए, उन्होंने कस्टर्ड सॉन्ग सेलेक्ट किया कि मस्टर्ड सॉन्ग?
1: देखिए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर कस्टर्ड और मस्टर्ड अगर मिल गए तो बहुत ही अच्छा होगा ना।
0: सही बात है। अब सरगम की बात हो रही है और सरगम में अगर कस्टर्ड गाना सुनाना है तो जाना पड़ेगा हमें कलोनियल कजन्स के बाद। और जैसे कि सबको मालूम है, लेस्ली लुइस और का ये ग्रुप जो था, ये बहुत ही खूबसूरत ग्रुप था हरियाणा के साथ। तो चलिए उनका एक गीत सुनते हैं, इसमें भी सरगम बेहतरीन है।
1: चलिए।

0: दोस्तों, यह है भारत एफएम, बजेगा भारत, झूमेगा भारत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फरमाइश। मैं हूं आपका मेज़बान अमिताभ रतूरी। आज की शाम सरगम के नाम है, यानी कि गाने जिनमें सरगम हो। और राजकार्निक साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस बनाया है गानों का। देखिए कितने गाने आपको सुनाते हैं, 25-30 तो राज साहब हैं हमारी लिस्ट में।
1: हाँ है, और बट बिफोर वी मूव ऑन आई वॉन्ट टू मेक अ कन्फेशन टू यू। I am tone deaf. तो ये आई टेल यू हाउ दिस होल थिंग स्टार्टेड। मैं टोन डेफ तो हूँ, पर आई वॉज ऑन अ खोज टू डिस्कवर ये राग कैसे पहचाने। तो आई कुडंट फिगर आउट द नोट्स, बट आई अंडरस्टूड द नेम्स ऑफ द नोट्स। तो मैं सोचा कि अगर किसी गाने का सरगम पता चले तो वी कैन आइडेंटिफाई द राग। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ऑन दिस होल थिंग अबाउट trying to get the sargam first and then figuring out is gaane ka raag kaun sa hai. To jo apne pehle jo iske pehle jo gaana suna, I could not figure out for the life of me ki isme mustard tha ya custard tha ya kaun sa raag tha, was impossible. But always Anita's selections are very eclectic and very unusual. But after that song we'll move on to something that is more run of the mill कहो and more standard हिंदी म्यूजिक। तो आप कौन सा गाना बजाओगे अभी?
0: भाई लाइनअप में तो मन्ना डे साहब है, और फिल्म का नाम था दिली, फिल्म का नाम था दिली तो है, तो उम्मीद यही है कि श्रोताओं का दिल है इस गाने पे को सुनने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आप वो सुनाओगे लागा चुनरी में दाग?
0: बिल्कुल, सुधीर मटानी साहब की फरमाइश थी इस गीत के लिए।
1: अच्छा, तो ये तो राग भैरवी, सॉर्ट ऑफ अ भैरवी है। एंड द नाइस थिंग अबाउट दिस इज दैट नॉट ओनली डज इट हैव सरगम इन इट, व्हिच इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू शो द फेस ऑफ द राग, देयर इज आल्सो अनदर कॉन्सेप्ट इन दिस राग व्हिच इज रेफर्ड टू एज द तराना। सो वी लिसन टू मन्ना डे'ज बुलंदी सिंगिंग इन दिस नेक्स्ट वन।

0: तो दोस्तों ये तो रहा मन्ना डे साहब का एकदम मास्टरपीस राज, व्हाट अ लवली लवली फरमाइश बाय सुधीर मटानी।
1: एब्सोल्युटली, थैंक यू सुधीर जी फॉर रेकमेंडिंग दिस सॉन्ग।
0: तो राज, कहा जाता है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया कि तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। चलिए अगले मोड़ पर आपको साहिर साहब के इस गीत में फिलॉसफी तो बहुत ही डीप थी, उसको कभी और हम समझाएंगे। अगले मोड़ पर आपको एक और गीत सुनाते हैं, हसन कमाल के लिरिक्स हैं इस गीत में, कि शमा को पिघलने का अरमां क्यों है, शमा को पिघलने का अरमां क्यों है, पतंगे को जलने का अरमां क्यों है, इसी शौक का इंतहा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। मिथुन साहब की म्यूजिक वाज जस्ट फैबुलस इन दिस मूवी, दिस होल मूवी हैड वंडरफुल सॉन्ग्स। राज,
1: अमित जी, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी इन होल, बट आई हैव सीन द version of this song, and I'll tell you, the picturization and the color sequence and cinematography is absolutely breathtaking. If people have not seen the movie, I want to listen to the, watch this whole movie myself. This particular song is based on kind of like a raag Bhupali, but it's sort of a loose Bhupali, I would say. It is not a very close Bhupali, but it's still a very beautiful rendition.
0: चलिए सुनते हैं क्षितिज चारे और शिल्पा राव को, फिल्म का नाम था अनवर, जावेदा जिंदगी।

0: तो दोस्तों, ये तो रहा फिल्म अनवर का एक खूबसूरत नगमा जिसको गाया था क्षितिज तारे और शिल्पा राव ने। म्यूजिक था मिथुन का। चलिए अगले मोड़ पर आपको एक पुराने गीत की तरफ ले चलते हैं। क्या कहते हैं कार्निक साहब? चित्रलेखा
1: जरूर
0: फिल्म,
1: जरूर चलिए। मेरा एक
0: चित्रलेखा।
1: ही कमेंट है, आई
0: हाँ
1: हैव ओनली अ शॉर्ट कमेंट अबाउट दिस प्रीवियस सॉन्ग अमित, कि यू नो वी यूज टू ऑलवेज थिंक कि ये जो राग बेस्ड सॉन्ग्स है वो सब पुराने हैं, बट इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। इवन द मेनी न्यूअर सॉन्ग्स हैव बेसिक क्लासिकल बेस बेस इन देम। सेकेंड थिंग इज दैट वन रीजन वाई ऑल दीज ओल्ड सॉन्ग्स दैट आर क्लासिकल बेस्ड आर टाइमलेस इज बिकॉज ये अपना पुराना हिंदुस्तानी म्यूजिक इज एब्सोल्युटली अटल। इट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज सो परफेक्ट दैट दीज सॉन्ग्स विल नेवर डाई इन माई ओपिनियन। बट सी द गुड थिंग इज दैट इवन द न्यूअर ट्रेंड इज टू इंक्लूड रागदारी म्यूजिक इन द न्यूअर ट्यून्स एज वेल। Having said that, we'll move on to our standard good old Malhar from the movie Chitralekha. All the songs in this movie were absolutely fabulous. So let's listen to Eri Jaane Na Dungi. This is based on Raag Malhar.
0: कि नहीं जाने देंगे दूर तुझे खुद से, ये ख्याल भी अच्छा है। नहीं जाने देंगे तुझे दूर खुद से, ये ख्याल भी अच्छा है। तुम ही दिखा देना समझदारी इश्क में, क्योंकि मेरा दिल तो बच्चा है। लीजिए सुनिए चित्रलेखा का ये खूबसूरत नगमा।

0: भाई कार्निक साहब, आपसे एक बात कहनी पड़ेगी कि मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक रोशन गेव बेटर म्यूजिक देन दिस फिल्म। चित्रलेखा में जो उन्होंने जो गाने दिए हैं हमें, आपको याद होगा रफी साहब का एक गीत था मन रे तू काहे नधीर धरे,
1: एब्सोल्युटली,
0: और फिर वो लता जी का संसार से भागे फिरते हो।
1: If I remember, once a song was dropped from the movie also, which was never included in that. But
0: acha, par usme Usha Mangeshkar, who didn't sing too many songs, she sang the masterpiece "Kahe Tarsaye Jiera."
1: Oh yes.
0: I mean, So I really think Roshan saab Roshan ho gaye is movie mein.
1: I agree with you. और दूसरी चीज ये है कि यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग एज द सॉन्ग वाज बीइंग प्लेड कि लता मंगेशकर एंड मदन मोहन कॉम्बिनेशन वाज एब्सोल्युटली आइकॉनिक, बट आई थिंक दैट हर विद रोशन वाज इक्वली स्किंटिलेटिंग एंड लवली सॉन्ग्स ईच ऑफ देम। द अदर थिंग आई वांटेड टू कमेंट वाज देयर वर अ फ्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स हु वर वेरी क्लोज इन फॉलोइंग द बेस राग। One, of course, was Basant Desai. Another person was Naushad Ali. And the third, I would say, a third and fourth, I would say, is Salil Chaudhary and Roshan Saab. These were people who were like rooted in classical Hindustani music.
0: So, let's move on. The film was released in 1971. Buddha Mil Gaya.

0: parampara.
1: Yeah.
0: And it's a very classical kind of a song.
1: This song was composed by R.D. Burman. So ek choti si kahani hai ki there was a little bit of headbutting between S.D. and R.D. S.D. being the dad, apparently had told R.D. ki you sound exactly like Madan Mohan. You need to create your own. पर ये गाना देखिए जो आगे आप सुनोगे, आई थिंक दैट टू से दैट दिस इज इन द शैडो ऑफ मदन मोहन इज प्रोबेबली नॉट रॉन्ग और प्रोबेबली नॉट राइट. आई एम सॉरी. द अदर थिंग टू से इज दैट द होल आर डी बर्मन स्फीयर ऑफ म्यूजिक इज सो बिग दैट आई डोंट थिंक एनीबडी कैन अक्यूज हिम कि हिज स्कोप वॉज लिमिटेड इन एनी वे. ही गेव बोथ वेरी क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड सॉन्ग एंड कम्प्लीटली ऑफ बीट, जैसे कि जो आपने कहा कि मस्टर्ड एंड कस्टर्ड बोथ ऑफ देम वर वेरी रैम्पेंट विथ हिम.
0: इस गाने की खासियत एक और ये थी कि बुड्ढा मिल गया वॉज मर्डर मिस्ट्री बेसिकली, एंड यू नो पीपल कीप गेटिंग किल्ड इन द मूवी. And every time Naveen Nischal comes back, he after a murder, he finds Om Prakash singing this song. So
1: yes,
0: it's like a Hercule Poirot type of inference, so causality and correlation mixed in together, you know. So yeah, चलिए सुनते हैं फिर इस गीत को. आप कुछ और कहना चाहते थे?
1: नहीं कुछ नहीं.
0: अच्छा
1: गीत सुनेंगे.

0: तो दोस्तों, ये तो एक छोटा सा आंतरा था, फिल्म बुड्ढा मिल गया था, जिसमें आपने सुना मन्ना डे को, और साथ में अर्चना गा रही थी उनके, आर डी बर्मन का म्यूज़िक। खैर, आज की शाम फरमाइश पे सरगम के नाम है, और मेरे ख्याल से कभी कभी हम सरगम बजा रहे हैं, और कभी कभी, जैसे आपने बताया कार्निक साहब, हम और भी कुछ वेरिएशंस कर रहे हैं सरगम के।
1: So, by the way, the previous song was predominantly based on Raag Khamaj, which is a raag that is used very often by both SD and RD Burman. So, agla gana jo hai is from the movie Chupke Chupke. So, we have talked about how the sargam is often used to show the face of the raag, to show the melody of the raag. But sometimes music directors have used the sargam with totally no concept, and the next movie I think was just simply, I mean, the song is just riotous and it is very situational, and I don't think I need to say any more than just starting the song and listening to the whole thing.
0: I call it the chicken and egg song. क्योंकि नहीं, इस गीत में, यू नो, वो बोलते हैं ना चिकन एंड एग प्रॉब्लम, तो इस गीत में वो पूछता है, गीत पहले बना था या बनी थी सरगम, किसी को क्या मालूम। और म्यूजिक डायरेक्टर्स दे गो बोथ वेज, समटाइम्स गीत पहले बनाते हैं, कभी कभी सरगम पहले बनाते हैं, तो यू नो, यू नेवर नो हाउ क्रिएटिविटी हैपेंस।
1: बट एंड मोटा मोटा दिस सॉन्ग इज आल्सो बेस्ड ऑन खमाज, बट you know, generally the Khamaj family doesn't belong to any strict raag in particular.
0: Chaliye, sunte hain Kishore saab aur Rafi saab ko.

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर सारे गा मा सारे गंगा सारे मा मांगा रेसा सारे गा मा सारे गंगा सारे मा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा मांगा रेसा।
1: तो मगर ऐसा पे ये गीत खत्म हुआ और अगला गीत शुरू होता है काली घोड़ी पर। तो काली घोड़ी द्वार खड़ी, why would you put this song on the list, Raj?
2: So this is based on Raag Kafi, and abhi to kafi maza ho gaya, to abhi fir wapas let's begin to do something, some serious good music listening, and we'll stick to our classical based songs again.

0: तो दोस्तों ये तो थे यशुदास और हेमंती शुक्ला फिल्म चश्मे बद्दूर में। और मेरे ख्याल से कार्निक साहब आप राग बेस्ड गानों पे वापस आ गए हैं जिसमें सरगम है, कुछ गीतों में तराना भी है। आप सरगम और तराना में फर्क क्या होता है?
1: तो दीज आर बेसिकली टूल्स और mechanisms to explore and demonstrate the raag. Dekhiye, as you know very well, in classical Hindustani music, the bandish words are very short. Agar wahi wahi repeat karoge, to sab aapke prekshak bore ho jayenge for 45 minutes or an hour. So musicians use all these tools such as sargam or tans, or which is otherwise known as alap. And the other instrument that they use is what is known as nom tom. So tarana is a form of a nom tom where there is nonsensical words that are used, such as tom tom tom am tom, whatever. So that is the difference.
0: Yeah, so nom tom sounds pretty nonsensical too.
1: Yes. But so the thing is, it is not, the words become unimportant, and that's the beauty of it, that the lyrics is not always the main focus of exploration of the melody. And although in film music the words become equally important, however the other thing to think about is that the situation of the movie, the lyrics of the song, and the musical construct, all of this has to fit in well with the what is going on in on the picture, on the screen. And therefore, musicians are limited in what they can do. And hence, when they divert away from the main raag, it is not surprising. I mean, I always say this in the before, that it is kind of like adding kesar to Shrikhand. Just because one adds kesar to Shrikhand, it does not become bad, or it is not called, it is still called Shrikhand. Only thing that happens is that the flavor is enhanced and the aroma is enhanced.
0: नहीं, so पर kind of like that. Yeah, पर ज़्यादा केसर डाल दें तो फिर टेस्ट खराब ही हो जाएगा. तो
1: वो भी होता है.
0: बड़े मेजर मेजर तरीके से ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इन सब चीजों को.
1: करेक्ट. या करेक्ट. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू.
0: तो देखिए, अब 1961 की फिल्म तेल माल मालिश बूट पॉलिश अगर फिल्म का नाम है, तो इसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें?
1: पता नहीं, देखें क्या मिलता है आपको.
0: नहीं, आप बताइए, क्योंकि ये तो आपकी चॉइस है. राग केदार मिल रहा है शायद.
1: राग केदार में ये गाना है. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, कहना जा, फ्रॉम दैट मूवी. तो दिस हैज प्रीडेटेड अस इन अ वे, सो आई हैव नॉट सीन द होल मूवी, बट द गाना तो याद है ठीक से ये. सो लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग. कांदा कांदा धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक धक

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: आप सबका भारत एफएम में बहुत बहुत स्वागत। यह है प्रोग्राम फरमाइश और आप सुन रहे हैं आज तराने भरे गीत, यानी कि सरगम भरे गीत, यानी कि वो गीत जिसमें सरगम का डायरेक्टली इस्तेमाल हुआ है। सरगम यानी कि सारे गमापा। तो राजकार्निक साहब, अगले मोड़ पर आप जो मुझे गीत सुना रहे हैं हमें, वो फिल्म अनपढ़ का है जो कि 1962 में रिलीज हुई थी। वी आर बैक टू मदन मोहन साहब एंड दिस टाइम द लिरिक्स आर बाय राजा मेहंदी अली खान।
1: ब्यूटिफुल सॉन्ग, द टाइटल ऑफ दैट सॉन्ग इज जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। तो गाने के पहले मैं सभी आपके सुनने वालों से एक क्षमा मांगना चाहता हूँ कि अगर मेरे फ्रॉम माय एंड इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स in something that I have just started sort of touching the pebble name, a grain of sand on the seashore of classical Hindustani music, so please forgive me for any mistakes that I may have made. But abhi to bhankas khatam ho gayi, now let's start listening to some good songs again with classical bass.
0: Wait a minute, I really like that Abhinetri song.
1: No, the songs
0: and you know the way jis tarah se Kishore Kumar beech mein sargam ke beech mein ha ha karte hain, maza aata hai. So par ha, ab chal rahe hain hum log wapas raag yaman ki taraf, I guess.
1: Yes,
0: aur is baar Lata ji ki awaaz hai.

0: तो दोस्तों ये तो रहा मदन मोहन का गीत। अगले मोड़ पर हम वापस जा रहे हैं प्रीतम की तरफ, और इस बार नई मूवी है राज साहब।
1: तो ये जो गाना था, आई हर्ड माई नीस सिंगिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर शो अमित,
0: इट वॉज एंड
1: नीति
0: शी
1: जो
0: डिड
1: हाँ,
0: सच अ ब्यूटिफुल जॉब शी डिड। या
1: तो आई वॉज नॉट अवेयर इवन अबाउट दिस सॉन्ग, देन आई सेड जब वेन आई हर्ड आई रिमेम्बर्ड दिस एंड आई सेड ये तो बजाना ही है कैसे भी, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट इज काइंड ऑफ लाइक खमाज, बट द सरगम इन दिस इज मोर लाइक बागेश्री रागेश्री टाइप टू मी एट लीस्ट. आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस वन, बट लेट्स द लिसनर्स डिसाइड फिर.
0: श्रेया घोषाल की आवाज़, एम जी श्री कुमार के साथ समीर के बोल और प्रीतम का म्यूजिक। द मूवी वॉज भूल भुलैया मेरे ढोलना।

0: तो दोस्तों ये तो थे श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार भूल भुलैया में। आज की शाम हमने डेडिकेट की सरगम के गीतों के नाम, और एमजी श्री कुमार का सरगम आपने इस गीत में बहुत बेहतरीन तरीके से गाते हुए उन्हें सुना। चलिए अगले मोड़ पर आपको ले चलते हैं मथुरा की तरफ। अब मथुरा क्यों आप पूछेंगे, तो हुआ ये कि स्वामी हरिदास जो थे वो कृष्ण को ज़मीन पे लाना चाहते थे, और उसको कृष्ण को ज़मीन पे लाने के लिए उन्होंने गाया राग सारंग। राग सारंग में काफ़ी सारे वेरिएशंस हो गए, जैसे कि वृंदावनी सारंग जो कि अब आप सुनने वाले हैं, पर शुद्ध सारंग, मध्यमद सारंग, ये सब क्या है राजकारणिक साहब?
1: तो दे आर ऑल सारंग स्लाइट वेरिएशन, जैसे भैरवी में भी जितने वेरिएशन है वैसे वे ये दिस इज अ टाइप ऑफ सारंग। मल्हार में भी वैसे देर आर लॉट ऑफ वेरिएशन विच डिफरेंट पीपल हैव क्रिएटेड। तो मेरी जांच इतनी है कि आई नो हाउ कैन आइडेंटिफाई अ सारंग, पर उसके आगे तो आई हैव टू रिफर टू समबडी एल्स और सम अदर फोक्स टू टेल मी एग्जैक्टली वॉट टाइप ऑफ अ सारंग इट इज। But this is a composition by the great Naushad Ali, and you know, like Naushad, as we said, it remains always very true to the rag. So let's listen to it.

0: दोस्तों, अगर आप झूम रहे हैं इस समय हमारे मधुर संगीत के साथ, तो ये तो हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि आज फरमाइश पे राज कार्निक साहब ने आपको सरगम वाले गीत सुनाए। तीन चार गानों की और गुंजाइश है, दो फरमाइशें बची हैं, पर फरमाइश पे जाने से पहले राज, एक येसुदास का गाना सुना जाए।
1: जरूर सुनेंगे, वी हैव नॉट हर्ड दैट। एंड ये भी है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ सलील दा एंड येसुदास इज क्वाइट यूनिक एंड इट विल बी लवली टू लिसन टू दिस कॉम्बिनेशन।
0: तो लीजिए सुनिए आनंद महल का ये खूबसूरत नगमा।

0: दोस्तों, सिनसिनेटी की एक सर्दी वाली शाम को आपको तपती धूप की याद दिलाता हूँ। जी हाँ, तपती धूप है और लू बह रही है और आपको सनली आपको एक छांव मिल जाती है, एक तरुवर के नीचे आपको राहत मिलती है। और जैसे ही राहत मिलती है कि आमों के मंज़र की महक फैल गई, आमों के मंज़र की महक फैल गई और फिर भी मेरी कोयल अभी तक नहीं कूकी। ऐसा कभी आपका एक्सपीरियंस रहा हो तो आपको ये अगला गीत ज़रूर पसंद आएगा। कार्निक साहब, इसकी फरमाइश की श्वेतल देसाई ने। उन्होंने कहा, भाई आपका थीम तो है सरगम, पर क्या मेरे लिए आप सरगम का एक गीत सुना सकते हो, यानी कि सरगम चलचित्र का?
1: क्यों नहीं सुनाएंगे आप, जो श्वेतल भाई की अगर फरमाइश है तो ज़रूर सुनाएंगे। तो अगर इसमें सरगम है भी नहीं तो इसकी गाने के पिक्चर का टाइटल ही सरगम है तो बजाना ही चाहिए ये गाना।
0: ठीक है, तो फिर हम कोयल की कुहू कुहू सुनते हैं।

0: दोस्तों, ये है भारत FM, बजेगा भारत, झूमेगा भारत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फरमाइश, और अभी आपने सुनी श्वेतल देसाई साहब की फरमाइश। आज की शाम हमने पंडित डीवी पालुस्कर और उस्ताद आमिर खान की बैजू बावरा के गीत के साथ शुरू करी, क्योंकि थीम थी सरगम वाले गीत, यानी कि गीत जिनमें सरगम है। चलिए, दो और राग बेस्ड गीतों के साथ हम आज की शाम ख़त्म करते हैं। कार्निक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी बढ़िया प्लेलिस्ट बनाने का। पर ये अगला गीत, इसकी फरमाइश आई थी चंपा भारद्वाज की, और राग पीलू में है ये, मेरे ख्याल से
1: ये राग पीलू में है। आई चित्तौड़ का वापस ये गाना है। वी आई थिंक वी प्लेड अ सॉन्ग फ्रॉम चित्तौड़।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

हो चकाचक फिर लो पान चबा। आहा।

0: ये है भारत FM,
1: बजेगा भारत झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत झूमेगा भारत, गाएगा भारत गुनगुनाएगा भारत। और गुनगुनाएगा तो क्या भाई साहब और हमारे सामीन, अब तो बात है आवाज़ और साजों की और मस्ती भरी शाम की। तो आइए ले चलें आपको अपने आज के शो की तरफ, जिसका कि नाम है गाते गुनगुनाते। और हम बात कर रहे हैं आज जो है आवाज़ की। तो आवाज़ हमारे शो का टॉपिक है आज। तो आपके पास अगर कोई ऐसे गाने गीत गज़ल्स हैं जो आप सुनना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं अपने दोस्तों को, तो हमारे जानिब लिख भेजिए अपनी फरमाइश और हम उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई फरमाइशें आ चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको मैं अपनी पसंद के कुछ और आपकी फरमाइश के कुछ नगमे सुनवाने जा रहा हूँ आज। तो आइए आज की शाम का आगाज़ करते हैं एक शेर और फिर पहली पेशकश के साथ। और पहली पेशकश ऐसी है जिसमें हिंट दिया जाएगा दोस्तों, और हिंट थोड़ी देर के लिए आप सुनेंगे पहचान जाएंगे, लेकिन फिर आपको मैं बताता हूँ इसको क्यों लिया गया था इस शो में। तो शेर कुछ ऐसे कहा गया है कि लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज़ के साथ छेड़ दे कोई गज़ल एक नए अंदाज के साथ। तो ये लीजिए, आपकी तरफ मैं एक हिंट पेश करता हूँ और आप हो जाइए तैयार, इस हिंट को पहचानिए और अपने जवाब में मुखड़े की कुछ पंक्तियों के बोल हमें लिख भेजिए। तो शुरू करते हैं हिंट दोस्तों, आज की शाम का आगाज़ करते हैं इस हिंट के साथ।

जिस जगह मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है।

और दोस्तों ये क्यों लिया गया है पहली पेशकश, तो इस तरह से आप सुनेंगे इसको, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो,

0: आइए दोस्तों, अब हो जाइए तैयार अपने पहले पेशकश को सुनने के लिए और अपने सवालों, हमारे सवाल और आपके जवाब को जांचने के लिए कि आपने क्या जवाब हमें लिख भेजे हैं।
1: अच्छा जी, काबू पा लेने हैं।

0: दोस्तों, ये थी मेरी पसंद की गज़ल और शेखर अग्निहोत्री साहब को बहुत पसंद है ये गज़ल, उन्होंने बताया है। सही पहचानने वालों के जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। अभी थोड़ी देर में आप जान गए होंगे दोस्तों कि आज का टॉपिक है आवाज़। तो आपने सुना शेर इस गज़ल के पहले, बहुत खूबसूरत शेर गुलाम अली साहब की आवाज़ में थे और उसके बाद उन्होंने गज़ल शुरू की चुपके चुपके, हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई बहुत ही शानदार गज़ल, जो कि फिल्म निकाह में भी थी दोस्तों। लेकिन ये मैंने आपको जो वर्शन सुनवाया, ये एक इन्होंने लाइव शो किया था इंडिया में और बहुत ही शानदार गज़ल्स हैं उस कैसेट में, जिसमें कि इन्होंने सारी गज़ल्स जो हैं अपनी रिलीज़ की थी। तो उसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी था, एक से एक शानदार गज़ल्स थी उसमें। तो मैं आपको पूरी गज़ल ना सुनवा कर आपकी फरमाइशों की तरफ चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें हैं। लेकिन गुलाम अली साहब को फिर किसी दिन सुनेंगे पूरी तफसील के साथ। इनकी गज़ल्स होती इतनी शानदार है, मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ा अपने आप को इसको बीच में रोकने के लिए। मीनिंग देयर वुड हैव बीन फ्यू मोर स्टैंजास इन दिस गज़ल। तो आइए दोस्तों, मैं आपको अब ले चलूँ पहले तो बताने के लिए हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं श्रोतागण, और उसके बाद सही जवाब वालों के नाम बताता हूँ आपको। इस बीच हमारे साथ लखनऊ से संजय गुप्ता एंड सुप्रिया गुप्ता जी जुड़ी हैं, दिल्ली से, न्यू दिल्ली से पवन कुमार साहब जुड़े हैं हमारे साथ, इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजेश दीक्षित साहब शाहजहाँपुर से, शालिनी सिंह जुड़ी हैं बदायूं से, और अभिजीत और सीमा जी के साथ साथ ज्योतिका आंटी लखनऊ से जुड़े हैं हमारे साथ, और दोस्तों श्रेश जी के साथ साथ अर्चना जी और लिटिल देवीना हमारे साथ जुड़े हैं कैलिफोर्निया, सॉरी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से जुड़े हैं। तो आइए, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। उम्मीद करता हूँ आपको पहली पेशकश पसंद आई, थोड़ी सी डिफरेंट थी आपकी फरमाइशों से, लेकिन गज़ल की बात की थी शेर में जो मैंने पहले कहा था, फिर एक और गज़ल आपके पेश नज़र हुई। इस बीच हमारे साथ दोस्तों प्रीमा जी के साथ साथ अमिताभ शर्मा साहब जुड़ चुके हैं और इस समय वो चंपावत उत्तराखंड पहुँचे हुए हैं, तो वेकेशन का टाइम है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ते हैं अपनी छुट्टियों में और इन्जॉय करते हैं अगर शो, तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें भी लगता है कि हम वेकेशन पे हैं आपके साथ। तो बहुत फीलिंग जो आती है वेकेशन की, सारी टेंशन से दूर हो जाइए और हमारे साथ जुड़िए, अपने सुबह को और सुहानी बनाइए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। आइए मैं आपको ले चलूं एक फरमाइशी गीत की तरफ। बात आपने सुनी कि इस गज़ल में बहुत कुछ जो है क्या बोलते हैं आरोह अवरोह अलंकार और बहुत सारी चीज़ें क्लासिकल गज़ल्स में होती हैं, लेकिन अब आप देखिए कि लता जी किशोर साहब को कुछ समझा रही हैं कैसे कि क्लासिकल में कैसे नोट्स उनको यूज़ किए जाते हैं, आप कुछ कुछ समझ गए होंगे। तो मैं आपको अब जो सुनवाने जा रहा हूँ वो है फरमाइश अभिजीत और सीमा चटर्जी के साथ साथ ज्योतिका आंटी की लखनऊ से। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज़ में, और आप जान गए होंगे मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। तो आप लिख भेजिए इतना ही हिंट समझ के कि किस में, कौन से गाने में लता जी समझा रही हैं सरगम कैसे गाते हैं, सारे गामा पा राइट। सो आइए सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार नगमे को। अब उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे श्रोताओं ने जिन्होंने सही जवाब लिख भेजे उनके नाम हैं पवन कुमार सिंह साहब न्यू दिल्ली, ब्रजेश दीक्षित साहब फ्रॉम शाहजहाँपुर, और शेखर अग्निहोत्री साहब के साथ साथ नीलम, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री जुड़ी हैं, ये इनको बहुत पसंद है गज़ल। तो मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों इनके साथ साथ। हमारे श्रोताओं में शुमार है जिनका, उनका नाम है कविता जी और सुदीप साहब, सिनसिनाटी से अपने दो बहुत ही खूबसूरत बेटियों के साथ जुड़े हैं। उनका नाम है अरण्या एंड तक्षवी। और अरण्या को मैं शायद पीहू के नाम से जानता हूँ, इफ़ एम आई राइट नॉट यू कैन कन्फर्म। तो आइए, तो मैं अब आपको बिना किसी विलंब के सुनवाता हूँ इस बात के साथ कि सही जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको।
1: हाँ सर, मैं बोलो।

तो दोस्तों कुछ क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम जो लता जी ने किशोर साहब को दी, हो सकता है आपने भी कुछ सीखा हो। मैंने तो बहुत कोशिश की, पता नहीं कितना सीखूंगा मैं, लेकिन देखिए कितने शानदार तरह से गाया गया है गाना और फरमाइश भी कितनी खूबसूरत थी अभिजीत जी के साथ साथ सीमा जी की और ज्योतिका आंटी की। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट अभिजीत जी। और आंटी को नमस्ते बोलिए। एक और हैं हमारे साथ आंटी, जिनको नमस्कार करना चाहता हूँ। कविता जी और सुदीप साहब के साथ साथ हमारे साथ जुड़ी हैं कविता जी की मदर, तो उनको हमारा सादर प्रणाम। और अगर उनको भी गाना म्यूज़िक पसंद है तो उम्मीद करता हूँ वो भी एंजॉय कर रहे होंगे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आइए मैं आपको अब ले चलूँ तारुफ करवाने आपसे किन का, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और उनसे हमने बातचीत शुरू करी नहीं है अभी तक। तो इस बीच हमारे साथ संजीव सूरमा साहब बरेली से जुड़े हैं और दीपेश पाठक बरेली से जुड़े हैं पूजा जी के साथ और माधव के साथ। तो इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं भारत अनुराग पांडे साहब शाहजहाँपुर से। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आज के शो में। आइए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ। कुछ और बातें पहले बता दूँ जो दीपेश साहब हमारे साथ शेयर करते हैं। एज़ ऑलवेज ही सेंड सम एडिशनल डिटेल्स अबाउट द मूवी। तो उसके बारे में बात यह है कि दोस्तों इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ शशि कपूर को देखा गया था और अभिनेत्री फिल्म से लिया गया था ये गीत। किशोर कुमार साहब के साथ लता मंगेशकर की आपने आवाज़ सुनी और बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, सारे गामा पा। यही था दोस्तों सही जवाब। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आइए दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर कुछ एक इवेंट ट्रिगर हुआ है। लगता है कुछ बताता हूँ आपको कुछ देर में। बट थैंक यू एनीवेज दीपेश भाई, आपने जो इनिशिएट किया। हो सकता है मैं लास्ट ईयर मिस हो गया था, तो इट्स अर्ली, बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं आप हमारा। तो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में इस बारे में, लेकिन थैंक यू एनीवेज फॉर योर लवली विशेस दीपेश भाई एंड ब्रिजेश भाई एज वेल। आइए मैं आपको दोस्तों फिर ले चलूँ अगली फरमाइश की तरफ अब। और आपने अभी तक अपनी फरमाइश भेजी नहीं है तो तैयार हो जाइए उसको लिख भेजने के लिए। अब मैं आपको जो अगला नगमा सुनाने जा रहा हूँ उसकी फरमाइश किन्होंने भेजी है अभी बताता हूँ आपको। पहले ये बताऊँ कि ये कौन सी फिल्म से लिया गया है और फिर आपको इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ मैं। यह है फिल्म एतबार का गाना। आपने एक गाना तो सुन ही रखा है, इसका डुएट है वो, लेकिन एक और है उस फिल्म में एक गाना और उन्हीं कलाकारों की आवाज़ में है जिसमें कि दूसरा गाना आपने सुन रखा है। तो मैं आपको ये खूबसूरत गाने की तरफ ले चलूँ, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ।

दोस्तों, आपने इस गाने को पहचान ही लिया और सही जवाब भी भेजे लिखकर बिना हिंट के। सिर्फ हिंट इतना था कि अतबार का सॉन्ग है और वो सॉन्ग नहीं है जो हम पहले प्ले कर चुके हैं कई बार। तो आप सही समझे, क्या बात है, शानदार तरह से आप इसको पहचान कर जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई सही जवाब के लिए। दोस्तों, एतबार फिल्म मैंने ज़िक्र किया था पहले भी एक बार की बहुत शानदार फिल्म है। उसमें आपको एक से एक बढ़िया किरदार मिलेंगे और वो किरदार निभाए हैं सुरेश ओबेरॉय, राज बब्बर, डिम्पल कपाड़िया एंड डैनी डेंजोंगपा ने। बहुत शानदार उसमें काम डैनी साहब का था। मुझे उनके जो डिटेक्टिव का रोल और उसके अंदर उनकी एक कैरेक्टर की कुछ एक स्टाइल ऐसा था कि आपने शायद उनको इस तरह के रोल्स में नहीं देखा होगा पहले, बहुत इम्प्रेसिव था। आप मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को। गाने तो आप एंजॉय करेंगे ही, जैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म में बहुत ही प्यारे प्यारे गाने और गज़ल्स हैं। तो दोस्तों, इस फरमाइशी गीत के बाद मैं आपको ले चलूँ अगले फरमाइशी गाने की तरफ। और इस बीच एक बात जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने कहीं पर मेंशन किया होगा, आप जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में हम डेट्स जब लिखते हैं तो पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर लिखते हैं। तो DD-MM-YYYY तो होता क्या है दोस्तों, अगर आप इसे किसी फाइल में रख दें और वो ग्लोबल एक्सेस उस फाइल को रहे, तो आप मंथ और डे को स्विच करके पढ़ेंगे, ये नेचुरल है। तो दोस्तों, इंस्टेड ऑफ नवंबर सिक्स दिस वाज टेकन एज June 11th। तो उसके लिए जो है मुझको बधाइयाँ आपने जो दी हैं, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपने इसको जो है अपने जहन में रखा और वहाँ पर आपने जो इसको इंटरप्रेट किया कि ये June 11th है इंस्टेड ऑफ November 6th, तो मैं उसको उसका कंपनसेशन मान लेता हूँ जो पिछले साल अगर रह गया था, तो वो आज मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ आपकी विशेस को। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल विशेस। और मुझको इस वजह से शायद दो मौके मिले इसको सेलिब्रेट करने के, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आइए, मैं आपको अगले गाने का हिंट देने जा रहा हूँ और आप हो जाइए तैयार। इस बीच हमारे साथ कविता जी भी जुड़ चुकी हैं, तो डिस्टिंग्विश करना होगा। कविता सबरवाल जी हैं इस समय न्यूयॉर्क से, इफ़ आई रिमेम्बर राइट। कविता जी, आपका सरनेम सही लिया मैंने या नहीं आप बताइए, लेकिन आपने भी ज्वाइन किया हमारे शो को और आते ही सही जवाब लिख भेजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। इस बीच हमारे साथ जो हैं संदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं उदयपुर से। संदीप साहब, वेलकम टू द शो। आवाज़ पर गीत आपको सुनवा रहे हैं आज, तो आपकी फरमाइश भी है हमारे पास, लाइंड अप है, तो कुछ देर में आपको सुनवाता हूँ मैं। आइए अब आप सुनिए अगले हिंट को और पहचान कर बताइए दोस्तों कि ये कौन से गाने की बात की जा रही है यहाँ पर, और फिर बताता हूँ किन की फरमाइश पर था ये।

दोस्तों, ये शानदार फरमाइश आप सुनने जा रहे हैं शानदार जगह से। जिन्होंने फरमाइश भेजी है उनके नाम हैं अमिताभ और प्रीमा शर्मा जी। दोस्तों, आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गाने को और फिर बात करते हैं आपके साथ इसके बारे में।

दोस्तों, ये हमसाया फिल्म का आपने जो दो गाना सुना, वो फिल्माया गया था जॉय मुखर्जी और उनके साथ साथ किन पर फिल्माया गया था आपको मैं देखकर बताना चाहूँगा, शर्मिला टैगोर, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर इसकी ज़रूरत है तो। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार फरमाइश आपने जो सुनी वो अमिताभ जी के साथ प्रेमा शर्मा जी की थी, चंपावत से। दोस्तों, इस खूबसूरत गाने को जो जिसकी तर्ज बनाई थी वो, उनका नाम है ओपी नैयर। ओपी नैयर साहब अपने गानों में ढोलक का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करते हैं। जैदी मैम, आप बहुत पसंद करती हैं, मुझको बहुत पसंद है ढोलक का इस्तेमाल गाने बनाने में, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा गाना। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि इसमें तर्ज किन की थी बनाई हुई, लेकिन बोल इसमें जो थे वो थे शेवन रिजवी साहब के। तो जॉय मुखर्जी और शर्मिला टैगोर की बात होती है तो हमारे साथ ऐसे श्रोता हैं लखनऊ से जिनका कि कुछ रिश्ता है जॉय मुखर्जी साहब से, तो सीमा जी का जो कहना चाहिए कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो जॉय मुखर्जी के क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो खुद आई मीन टू से सीमा जी और अभिजीत साहब, ज्योति कांटी, ये जॉय मुखर्जी के रिलेशन में हैं। तो हमें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस टाइप का कुछ सिनेरियो बनता है, हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमारे साथ शो में हैं लेकिन बहुत सारे उम्दा कलाकारों के रिश्तेदार हैं या उनके जान पहचान के लोग हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, लेकिन इससे भी अच्छी एक जानकारी और थी जो कि ये है कि ये गाना हमने बताया किनकी फरमाइश पर था, लेकिन एक और हैं जिनको कि ये बहुत पसंद है गाना और उनकी फरमाइश भी थी। थोड़ा सा देर से बता रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। पवन कुमार सिंह साहब की फरमाइश पर भी ये गाना आपने सुना दोस्तों, और क्या बात है दोस्तों। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों अब अगली फरमाइश पर, और वो भी एक हिंट के साथ सुनवाते हैं आपको, और ये है बहुत ही शानदार। मेरी समझ में आता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स एक्चुअली दैट वी वुड बी प्लेइंग टुडे। हालांकि एक से एक शानदार हमारे पास हैं आपकी फरमाइशें, लेकिन आप इसको सुने और बताइए आपको कैसा लगता है ये गाना, फिर इसके बारे में बात करता हूँ आपके साथ।

दोस्तों गाना लाइनअप करने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अभी तैयार हूं। मैं आपको हिंट देता हूं अब। देख मुझे

आइए दोस्तों, ये जो फरमाइश मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूँ उनका नाम मैं बताता हूँ। गाना आप सुने मधुसूदन दीक्षित साहब के साथ साथ शालिनी जी की फरमाइश है और जैदी मैम की भी फरमाइश पर मैं आपको अगला वाला ये नगमा सुनवाने जा रहा हूँ। आइए एंजॉय करते हैं इस क्लासिक हिट सॉन्ग को।

दोस्ती फ़िल्म का ये बहुत ही खूबसूरत फरमाइशी नगमा आपने सुना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको भी उतना पसंद आया होगा जितना कि मुझे। और आपने इस फिल्म को देखा या ना देखा नहीं मालूम मुझे, लेकिन आपने गाना ज़रूर सुना होगा। रफ़ी साहब की शानदार आवाज़ जिन किरदारों के पीछे गा देते हैं ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की आवाज़ है। तो रफ़ी साहब की ये क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी थी और हम अभी तक जब भी सुनते हैं बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं उनसे। तो दोस्तों ये क्लासिक फिल्म जो हिट रही बहुत, 1964 में रिलीज़ हुई थी और राजश्री फिल्म प्रोडक्शन।

डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये डिटेल्स मैंने शेयर की हैं दीपेश पाठक साहब की तरफ से भेजी हुई, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश भाई। आइए मैं आपको बताऊं कि सही जवाब लिख भेजने वालों के नाम क्या हैं। पवन कुमार सिंह साहब न्यू दिल्ली, दीपेश पाठक साहब फ्रॉम बरेली, शालिनी सिंह जी फ्रॉम बदायूं, ब्रिजेश दीक्षित फ्रॉम शाहजहांपुर, सुप्रिया जी, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन। इस बीच हमारे साथ संजय सक्सेना जी जुड़ गए हैं लखनऊ से। संजय साहब क्या हाल हैं आपके? गुड मॉर्निंग टू यू। लखनऊ के क्या हाल हैं, क्या चल रहा है, गर्मी का हाल चाल कुछ सुधरे या वैसे ही अभी तक, बताइए कुछ। उसके साथ बातचीत करते हैं आपके साथ, उस बारे में बताएं तो। इस बीच दोस्तों एक मालूमात हासिल हुई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में, और आप अगर मौका लगे तो दोस्ती फिल्म देखें। अब मैंने भी वैसे देखी नहीं है, लेकिन सुना है और कुछ कुछ पार्ट्स उसके मूवी के देखे हैं, तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। गाने बहुत अच्छे हैं, शानदार। एक ही गाना नहीं, कई और गाने हैं इसमें, बहुत ही अच्छे गाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अगले फरमाइशी नगमों की तरफ। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर उदित और रेनु यादव जुड़ चुकी हैं शाहजहांपुर से। सब इनका स्वागत करते हैं दोस्तों। काफ़ी वक्त के बाद इनका यहाँ पर आगमन हुआ है, शो में जुड़े हैं। आप लोग कैसे हैं और आपके आसपास के लोग, यानी कि जो बच्चे आपके साथ मिलकर इस शो में शामिल होते हैं, उम्मीद करता हूँ वो भी अब आने लगेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी फरमाइश हमें भेज दीजिए और फिर हम देखते हैं कि हम उनको शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बीच एक मालूमात जो हासिल हुई वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि हमने जैसा कि पहले आपको बताया कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो ट्रैवल पे भी जाते हैं तो भी हमारे शो में शामिल होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और यही खुशी मैं ज़ाहिर जो करना चाहूँगा वो इस मालूमात के साथ कि सबसे पहले तो ब्रिजेश दीक्षित साहब की तरफ से ये मैसेज है कि इन्होंने जो बात छेड़ी हमने जो जन्मदिन की ना, तो उसके लिए मेरे लिए जो इन्होंने मैसेज भेजा है, कहते हैं कि दिल से मेरी दुआ है कि खुश रहो तुम, मिले ना कोई गम जहां भी रहो तुम, समंदर की तरह दिल है गहरा तुम्हारा, सदा खुशियों से भरा रहे दामन तुम्हारा, जन्मदिन मुबारक हो, उम्र बढ़ती रहेगी, साल घटते रहेंगे और होती रहेगी गुफ्तगू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है साहब, ब्रिजेश भाई आपने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर दीज वंडरफुल लाइन्स दैट यू रोट जस्ट ड्यूरिंग द शो इट्सेल्फ। और बात भाई यहाँ तक ही नहीं है, ब्रिजेश भाई ने अपने भाई साहब को जो है US के लिए रवाना किया है, और वो पहुँच रहे हैं अपने, पहुँच चुके हैं कैलिफोर्निया अपने साहबजादे के पास, और वहाँ से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। तो उनका नाम है अवधेश दीक्षित साहब, और ये भी एक जो है बहुत ही शानदार तरह से अपना योगदान देते हैं भारतीय राजनीति में, यानी कि वहाँ पे MLA, या मुझे आप करेक्ट कीजिए, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहाँ से जो है काफ़ी जो प्रोग्रेस हुई है शाहजहांपुर में, आपने देखा होगा, वो उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। तो संजय दीक्षित जो हैं वो इनके साहबजादे हैं, तो उनके साथ मिलकर ये आज शो में शामिल हुए हैं। तो अवधेश जी, वेलकम टू द US एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टे देयर विद योर सन, एंड आई डोंट नो योर सन इज़ मैरिड, सो विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो दोस्तों अब आपको मैं ले चलूं अगले फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन हमारे साथ एक श्रोता जो जुड़े हैं उनका नाम है श्री

कफीलुर रहमान साहब, तो अगर वो हमारे शो में भी जुड़े हैं तो अगर कंफर्म करेंगे देन आई विल टॉक अबाउट दैट। अदरवाइज़ मैंने बताया आपको संजय सक्सेना साहब लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो आइए मैं आपको सुनवाता हूँ अगला फरमाइशी नगमा अब। और इस बीच आप अगर जुड़े तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें अपनी फरमाइश। तो मैं आपको ले चलूँ अब उस नगमे की तरफ जिन्होंने ये फरमाइश की है, मैं उनको अभी तक इस शो में मैंने देखा नहीं है, तो मैं वेट करता हूँ उन श्रोताओं का जिनकी फरमाइश अभी लाइंड अप तो है बट उन्हें मैंने अभी तक उनसे कंफर्मेशन नहीं मुझे मिला है। लीजिए आप सुनिए अगला फरमाइशी नगमा। चलिए अगर सब फरमाइश जिनकी हैं वो शामिल ना हैं ना भी हो सकें तो जो भी शामिल हैं उनकी फरमाइश पर ही मैं गाना सुनवाता हूँ आपको। और ये है शालिनी जी की फरमाइश, और दूसरे जो श्रोता हैं उनका नाम मैं बताता हूँ बाद में, नहीं तो पूरा हिंट डिस्क्लोज ना हो जाए। छोटा सा हिंट है, आप बताइए कौन सा गाना है यहाँ पर शालिनी जी सुनवाना चाहती हैं। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। आगे दोस्तों मैं नहीं बता सकता, तो इतना ही बहुत हिंट है आपके लिए।

देख लो आवाज़ देकर प्रेम गीत फिल्म का ये खूबसूरत गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, और इन्होंने अपनी आवाज़ जो है वो अनीता राज को दी थी इस फिल्म में। इस फिल्म में राज बब्बर साहब भी देखे गए थे। बहुत ही शानदार फिल्म, एक से एक गाने इसमें। और कुछ जानकारी इस फिल्म के बारे में, तो म्यूज़िक था वो था जगजीत सिंह साहब का, और सुदेश इस्सर डायरेक्टर थे उसमें, और इसमें इंदीवर साहब ने जो है गीत में बोल दिए थे। तो आप सभी ने जिन्होंने इसके सही जवाब लिख भेजे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बात है आवाज़ की, तो इस आवाज़ की बात पर मैं आपको कुछ ऑफ टॉपिक गाना सुनाने के लिए जा रहा हूँ, और उसकी वजह है एक आपको जैसे मैंने बताया हमारे श्रोता जो हैं वेकेशन पे हैं लेकिन हमारे साथ टाइम निकाल कर हमारे शो में जुड़े हुए हैं, तो उनकी ही कुछ बात अगर हम करें, थोड़ा सा उनका कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करें तो अच्छा रहेगा। तो बात है मौसम की, मैंने पूछा कि कैसा मौसम चल रहा है, तो उसी पर बेस्ड मैं आपको सुनवाता हूँ अगला गाना जो है। आप थोड़ा सा हिंट सुनिए फिर मुझे बताइए कि कौन से गाने की बात की जा रही है यहाँ। पहले मैं आपको छोटा सा गुनगुना के देता हूँ हिंट और फिर सुनवाता हूँ इन्हीं की आवाज़ में, जिनकी आवाज़ में ये मैं गाना आपको सुनवा रहा हूँ, उनके नाम बताता हूँ थोड़ी देर में। इनका गाना लाइनअप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बस मैं हिंट दे रहा हूँ और तब मैं आपको बीच में गाना पुल अप भी कर लूँगा।

और अब आप सुनिए इसके कुछ बोल मैं आपको सुनवाता हूँ अमिताभ शर्मा जी और प्रेमा शर्मा जी की आवाज़ में, जो कि बहुत ही खूबसूरत गायकी में जो है इंटरेस्ट रखते हैं और गाते हैं बहुत अच्छा, और इनकी फरमाइशें भी इसीलिए इतनी अच्छी होती हैं। चंपावत का मौसम है और आप जान गए होंगे ये गाना सही मौके के लिए वेट कर रहा था, तो सुनिए इसको, इसके कुछ बोल और बताइए।

दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कौन से गाने की बात की जा रही है, क्योंकि अमिताभ शर्मा और प्रेमा शर्मा जी की खूबसूरत गायकी को आपने सुना, उससे आपको पता लग गया कि ये देखिए मौसम कितना अच्छा है वहाँ का, इनकी बात से पता लगेगा।

0: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, मुझे लगता है आपके चंपावत में ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल फिट बैठती हैं। मुझे ऐसा लगता है वहाँ की फिज़ा बहुत ही सुहावनी है और सीनरी वहाँ की तो है ही बहुत शानदार। कुछ पिक्चर्स देखी मैंने, बहुत ही शानदार। आपका जो चंपावत है तो अच्छा है कि कुछ चीज़ें अगर थोड़ा सा रोक कर रखी जाएं तो एक वक्त आता है कि सही वक्त होता है तब प्ले की जाती हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको जो है अमिताभ शर्मा जी और प्रेमा शर्मा जी की आवाज़ में ये खूबसूरत जो हिंट के बाद गाना सुनाया था, फिर आपने जो गाना सुना किशोर साहब और लता जी की आवाज़ में, या किन की आवाज़ में, आशा जी की आवाज़ में, तो वो आपने इंजॉय किया होगा। और आपके रिस्पॉन्सेस देख के ये मुझे पता लगता है, मैंने बिल्कुल भी इसका कोई हिंट नहीं दिया था कि ये मैं शामिल करने जा रहा हूँ, गाना ऑफ टॉपिक था, तो प्रेमा जी ने भी इसको सही पहचाना। इनको पता भी नहीं है ये कब भेजा गया था, यहाँ पर पहुँचा है हमारे पास। तो दोस्तों आइए मैं आपको ले चलता हूँ उन श्रोताओं के तारुफ कराने के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ हैं कविता सबरवाल जी न्यूयॉर्क से, और लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से ही हैं श्रेयश अर्चना जी और देवीना पाठक। इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं संजीव अरोरा और डॉली अरोरा और मास्टर अर्जुन गाज़ियाबाद से, और संदीप सिंह साहब उदयपुर से, रेनू जी, डॉक्टर उदित यादव फ्रॉम शाहजहांपुर, और बाकियों के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संजय गुप्ता जी, अभिजीत और सीमा जी के साथ, ज्योतिका आंटी, ब्रिजेश दीक्षित साहब, शालिनी सिंह जी, अवधेश दीक्षित जी और शालिनी सिंह जी, सुप्रिया गुप्ता जी लखनऊ से, पवन कुमार सिंह न्यू दिल्ली से, शेखर अग्निहोत्री साहब, संजीव सूरमा जी, दीपेश पाठक साहब और भारत अनुराग पांडे साहब, संदीप सिंह साहब, प्रेमा शर्मा जी, अमिताभ शर्मा जी चंपावत से, और अवधेश जी जो हैं कैलिफोर्निया से अपने सुपुत्र श्री संजय दीक्षित जी के साथ हमारे शो में जुड़े हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं संजय सक्सेना जी लखनऊ से, और हमारे साथ कफीलुर रहमान सर भी जुड़े हैं और देहरादून से वो जुड़े हैं, ऋतुराज सिंह साहब प्रयागराज से। ऋतुराज साहब आपका बहुत इंतज़ार रहा मुझको पर्सनली, क्योंकि आपके जो फरमाइशें हैं वो इस शो में वेट कर रही हैं आपका, और आपकी फरमाइश बहुत शानदार हैं तो मैंने अभी तक उनको छुआ नहीं है। ब्रिजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं बरेली से, और ब्रिजेश साहब की हमारे पास कई बार फरमाइश आई लेकिन मैंने कंफर्मेशन ना मिलने की वजह से उनके हमेशा मैंने शामिल नहीं कर पाया, लेकिन कुछ बार शामिल किए, तो आज कोशिश करूँगा ब्रिजेश भाई आपकी फरमाइश भी शामिल हो। कपिल जाम साहब हमारे साथ जुड़े हैं जैदी मैम के साथ और मधुसूदन दीक्षित साहब के साथ। चलिए दोस्तों मैं आपको अब ले चलूँ अगले फरमाइशी गाने की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको छोटा सा संदेश भारत एफएम की तरफ से सुनवाने जा रहा हूँ।
1: दिस इज भारत एफएम,
2: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।

0: ये है भारत FM।
1: बजेगा भारत, झूमेगा भारत।
2: जी हाँ दोस्तों, बजेगा भारत FM, झूमेगा भारत, गाएगा भारत, गुनगुनाएगा भारत। तो दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज आवाज ही टॉपिक है। तो लेकिन मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ अगले गाने का, क्योंकि उससे जो है मज़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हिंट मैं अभी तक दिया नहीं है मैंने, जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ अगला फरमाइशी गाना।

दोस्तों आइए मैं आपको सुनवाता हूँ। इस बीच एक छोटा सा अंतराल था जो कि थोड़ा बड़ा हो गया होगा बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब हम ले चलते हैं आपको एक फरमाइशी गाने की तरफ, और उसका हिंट कुछ इस तरह से है।

संजय गुप्ता साहब लखनऊ से और ब्रिजेश पाठक साहब बरेली से इस गाने की फरमाइश करते हैं, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये खूबसूरत गाना। आप

किनारा फिल्म का ये दो गीत आपने सुना, भूपिंदर सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलजार ने इस फिल्म को बनाया था दोस्तों 1977 में। गाने एक से खूबसूरत, फिल्म भी बहुत शानदार थी दोस्तों। इस फिल्म में जितेंद्र, हेमा मालिनी के साथ साथ धर्मेंद्र को भी देखा गया था और बहुत ही शानदार फिल्म है। इसके गाने बहुत अच्छे हैं। एक आपने सुना, किसी और शो में आपको और भी गाने सुनवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग रिक्वेस्ट, ब्रिजेश पाठक और संजय गुप्ता साहब। आइए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊं कि सही जवाब किन्होंने भेजे। तो रेनू यादव जी ने हमें सही जवाब भेजे और उनके साथ साथ पवन कुमार सिंह साहब, शालिनी सिंह जी, दीपेश पाठक, प्रेमा शर्मा, अमिताभ शर्मा जी और डॉली अरोरा, संजीव अरोरा। आइए दोस्तों, कुछ और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। उनके नाम हैं मोहम्मद आज़म साहब जो हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो साहब, आप लखनऊ से जुड़ते हैं या किसी और शहर से, आप थोड़ा कंफर्म करें। मुझे जहाँ तक मालूम है वो उसके हिसाब से लखनऊ नज़र आया मुझे, लेकिन आप बताएं इस बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन एडवांस। इस बीच हमारे साथ गजेंद्र दिघे साहब और देविका जी जुड़े हैं अपने दो शानदार बेटों के साथ, सोहम दिघे और समर दिघे के साथ। आइए, वरुण पंडित साहब हमारे साथ शाहजहाँपुर से जुड़े हैं, समित चटर्जी कोलकाता से जुड़े हैं हमारे साथ, क्या बात है। और आइए मैं आपको ले चलूँ, आप कुछ और बातें बताऊँ अगले गाने के बारे में, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हम आपका वेट करते हैं दोस्तों, आपका कंफर्मेशन आने के बाद उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हो पाता है, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन चलिए, कुछ गाने ऐसे हैं जिनको कि शामिल करना जो है लाजमी होता है। तो उनमें से एक मैं फरमाइश आपको सुनवाने जा रहा हूँ अब, और फिर बताता हूँ हिंट के बाद कि किन की फरमाइश पर आप ये गाना सुनने जा रहे हैं।

तो ये दोस्तों है ऋतुराज सिंह साहब की फरमाइश पर ये खूबसूरत गाना आप जो सुनने जा रहे हैं। प्रयागराज से जुड़ते हैं हमारे साथ।

ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ ये नगमा अपने उम्मीद उदित नारायण साहब की आवाज़ में सुना, और उम्मीद जहां वर्ड आ गया निकल के वो मेरे मुंह से, वो इसलिए भी समझें आप कि उम्मीद से बढ़कर, मतलब उदित नारायण साहब ने जो गाने गाए थे, आप जानते होंगे कि ए आर रहमान साहब के साथ इन्होंने जब काम किया उससे पहले इन्होंने इस तरह के गाने अटेम्प्ट नहीं किया था उनको गाने का। हाँ, प्राइवेट कुछ उनके जो वीडियोस हैं उसमें मैंने देखा था कि इन्होंने उस तरह के कुछ गाने कोशिश की थी गाने की। वो किन के साथ था? मेरे ख्याल से वो मुझे जहाँ तक याद है वो पता नहीं, वो श्रवण कुमार हैं, कौन है जो नदीम के साथ, नहीं जो विनोद राठौर के भाई हैं, जो विनोद राठौर के भाई, वो नदीम के साथ, नदीम साहब के साथ ही उनका ड्यूओ था शायद। तो उनके साथ कोई एक रिकॉर्डिंग पे मैंने सुना था, तो एक लेडी थी, शायद वो डायरेक्टर की, म्यूज़िक डायरेक्टर की वाइफ और उनका बेटा था, उदित नारायण साहब को समझा रहे थे कि ये ऐसा गाना है, तो गा रहे थे और बहुत शानदार पहले अटेम्प्ट में उन्होंने गाया, तो बच्चा बहुत खुश हो गया, इतना मुझे याद है। तो लेकिन जब ये इनके संपर्क में आए ए आर रहमान साहब के, तो इनकी गायकी को एक और ही लेवल पर लेकर चले गए वो, और आपको ये गाना जो है उतना ही पसंद आया जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जितना कि मेरा ये दिल के करीब है ये गाना। उदित नारायण साहब आप जानते ही हैं मेरे फेवरेट सिंगर्स में से हैं, और अगर मैंने कुछ कोशिश की और आपके कमेंट्स मिले तो बहुत बहुत खुशी होती है उसकी कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सही जवाबों के बारे में बताऊं, और ये बताऊं एक बार फिर से कि ऋतुराज सिंह साहब प्रयागराज से जुड़ते हैं, और कई बार इनकी फरमाइश बहुत अच्छी होती है लेकिन कई बार प्ले नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम इनके मैसेजेस अगर रिसीव करते हैं थोड़ा सा टाइट रहती है सिचुएशन, यानी कि बहुत सारे हमें अगर मिल चुके हैं फरमाइश के नगमे, तो मुश्किल हो जाता है उसको स्क्वीज़ करना लास्ट मोमेंट पे। लेकिन ये शानदार पेशकश को शामिल करने से मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच ऋतुराज साहब। ऐसे ही आप अपनी फरमाइशें हमें भेजते रहा करें और ज्वाइन करके कंफर्म कीजिए। मोहम्मद आज़म खान साहब लखनऊ से ही ज्वाइन करते हैं, इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, इस बीच मीनिंग जुड़े तो हैं, कह रहे थे मैं आपको सुन रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन अब बताता हूँ मैं क्या उन्होंने लिखा। तो सलमान रिज़वी साहब जो कि हार्टफोर्ड US से ज्वाइन करते हैं, तो उनका मैसेज आया है करीब करीब एक घंटे डेढ़ घंटे के बाद, उन्होंने सही जवाब लिख भेजा ए अजनबी, और फिर उन्होंने ये बताया हम भी आपकी आवाज़ के जादू में सराबोर हैं करीब एक घंटे भर से। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कमेंट एंड एनकरेजमेंट सलमान साहब। इनके साथ साथ संजीव जी और डॉली अरोरा, इनके भी बहुत ही एनकरेजिंग कमेंट्स मिले मुझे, थैंक यू सो मच। और देखते हैं कि हम आपको और कौन से गाने सुनवाएं। इससे पहले सही जवाब जिन्होंने लिख भेजे उनके नाम है रेनू यादव, संजीव अरोरा, डॉली अरोरा, मास्टर अर्जुन, इन्होंने सही जवाब लिख भेजा, और ऑफ कोर्स सलमान रिज़वी साहब और नीलू जी ने सही जवाब लिखा है। और चलिए मैं आपको कुछ और सही जवाबों के बारे में बताऊं। मुझे याद है प्रेमा जी का मैसेज सही जवाब के साथ मिला था, प्रेमा जी यानी प्रेमा शर्मा और अमिताभ शर्मा जी, और कुछ और दोस्तों मैं अब आपको ये बताता हूँ कि दिल से फिल्म का ये गाना था, और 1998 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मणि रत्नम हु प्रोड्यूस्ड इट विद RGV यानी कि राम गोपाल वर्मा एंड शेखर कपूर ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया था फिल्म को। तो दोस्तों ये कुछ इंसर्जेंसी जो असम में होती है, मतलब पाई गई थी, काफ़ी वक्त से इंसर्जेंसी के केसेस सुनाई देते थे, न्यूज़ आते थे, उस पर बेस्ड कहानी थी ये फिल्म की दिल से, और बहुत ही प्यारे तरीके से इसको फिल्माया गया है। शाहरुख खान साहब, इनकी एक्टिंग ऊपर से
मनीषा कोइराला ने भी इसमें काफ़ी डिफरेंट रोल किया है और बहुत ही बबली कैरेक्टर जो कि कहना चाहिए वो था प्रीति जिंटा का इस फिल्म में। तो आपको याद आ गया होगा अच्छे से दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी होगी। मैं जब 1999 में वीजे के घर पहुंचा था तो कहते हैं ये दीपेश भाई साहब की भेजी हुई डिटेल्स हैं और एक मैसेज ये भी आया उनके जानिब से। मैं जब 1999 में वीजे के निवास हैदराबाद पर गया था, भोपाल से ट्रैवल करके आए थे ये, उस समय इन्होंने ये यानी कि वीजे ने ये गीत सुनाया था। इस गीत को गाना जितना मुश्किल है, वीजे इस गीत को उतनी ही आसानी से और खूबसूरती से गाते हैं। थैंक यू सो मच दीपेश भाई फॉर दिस वंडरफुल कमेंट, एंड मेरी मेमोरीज़ को फिर से रिफ़्रेश किया। याद हमेशा है मुझे, लेकिन आपने इसको मेंशन किया तो बहुत अच्छा लगा। विनोद राठौर के बारे में, हाँ ये भाई हैं एक्चुअली श्रवण कुमार जो हैं, तो मुझे जो सही याद था वो यही थी कि उदित साहब को उन्होंने गाना बना के दिया कंपोज करके और उन्हें का गाइए आप, सिर्फ हारमोनियम के साथ गवा रहे थे। बहुत ही प्यारे तरह से उन्होंने एक ही टेक में, मतलब एक ही बार में समझ लिया उसको। तो आइए चलिए दीपेश भाई, आपकी फरमाइश और आपके गाने बहुत देर से वेट किए जा रहे हैं, तो मैं अब ले चलता हूँ एक ऐसे गीत की तरफ जिसने हमें रेडियो सुनने के शौक़ को जो है लगा दिया है मुझको पर्सनली। ये जो अगला जो गाना आ रहा है, मैं जब जब सुनता था रेडियो तो मुझे कुछ एक ऐसी आवाज़ें, ऐसे ऐसे गाने आते थे जो उसमें प्ले किए जाते थे रेडियो में, तो रात का माहौल होता है जैसे आप गर्मियों के दिनों में, उन दिनों में इतना ख़राब नहीं हुआ करता था मौसम, मैं बता रहा हूँ आपको जो बात वो है लेट 80s की बात बता रहा हूँ। तो रात में घरों में जो है जितना टेम्परेचर होता था, छत पे आप चले जाएं अगर कुछ टाइम के बाद तो वहाँ पर काफ़ी ठंडी हवा चलती थी और बहुत सुहाना माहौल बन जाता था वहाँ पर। तो वहाँ अगर रेडियो में आप गाने सुन रहे होते थे तो उनमें एक मैं बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कौन से गाने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये वो गाना नहीं है जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके ही संदर्भ में यानी उसके बैकग्राउंड में सेट कर रहा हूँ। तो उसमें एक गाना ये चलता था, शो के नाम से ही रिलेटेड ये गाना था, तो उसको मैं बहुत सुनता था। आप बताइए कि ये किन्होंने गाया है, छोटे से एक हिंट को बता रहा हूँ मैं आपको गा के।

तो धरती को आकाश पुकारे, यही था शायद उस रेडियो प्रोग्राम का नाम भी। और उस कशिश के जैसे ही कशिश वाले गाने को मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, किन की फरमाइश पर ये मैं आपको बता रहा हूँ उनका गाना लाइन अप करते ही। और ये है साहब दीपेश पाठक और द्विवेदी मैम की फरमाइश पर, यानी कि वीना द्विवेदी मैम और दीपेश पाठक, पूजा पाठक जी और मास्टर माधव पाठक की फरमाइश पर है। तो ये गाना आप सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उसका कुछ हिंट इस तरह से है।

चलिए दोस्तों, आपको ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के बहुत ही खूबसूरत गाने की तरफ ले चलता हूँ, दीपेश जी और वीना मैम की फरमाइश पर।

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

0: नूरजहां और सुरेंद्र साहब की आवाज़ में आपने ये सुना, यानी कि ये फिल्म थी दोस्तों अनमोल घड़ी, 1946 में रिलीज़ हुई थी। नौशाद साहब ने इसमें संगीत दिया था और महबूब खान साहब ने डायरेक्शन मूवी का दिया था, और बोल थे तनवीर नकवी साहब के। और क्या शानदार इस फिल्म आवाज़ देखिए आप, नूरजहां की आवाज़, नूरजहां जी का जवाब नहीं है, मतलब वो एक्टिंग भी उन्होंने की है कि नहीं आप कंफर्म करें, लेकिन गाना तो उन्होंने इतना शानदार, एक एक गाना उनका बहुत ही शानदार रहता था। और उनको सुनकर बहुत सारे नए सिंगर्स ने जो है बॉलीवुड में कदम रखा और फिर कमाल का गाना शुरू किया। तो ये बहुत सिंगर्स की जो हैं, बहुत तेरे सिंगर्स जो हैं, उनकी इंस्पिरेशन भी रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उतना ही पसंद किया होगा इस गाने को जितना कि ये मुझे पसंद आया। और मुझे कई मैसेजेस भी मिले हैं, रेणु गुप्ता जी, डॉक्टर उदित यादव साहब, इन सभी ने इसको बहुत पसंद किया है और बताते भी हैं कि नूरजहां को इनको की आवाज़ इन्हें बहुत पसंद है, रेणु जी मेंशन करती हैं। इस बीच हमारे साथ प्रभात रंजन साहब असम जोरट से जुड़ गए हैं। प्रभात जी, आप थोड़ा सा विलम्ब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि हमने आपके ही राज्य के बारे में जो फिल्म एक बनाई गई थी उस पर दिल से फिल्म का एक गाना सुना था थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम में, और वो ऋतुराज सिंह साहब की फरमाइश थी ए अजनबी, तो काफ़ी पसंद किया गया वो। मैं चाहता था कि अगर आप भी होते उस फरमाइश को प्ले करने के पहले तो कुछ और बात होती इस बारे में, मज़ा आता। आइए दोस्तों, अब ले चलता हूँ आपको उस गाने की तरफ जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि माहौल थोड़ा सा ऐसा बनेगा उस गाने से कि बस झूम जाए सुनने वाले, ऐसा कुछ माहौल बनने जा रहा है। और ये है बृजेश दीक्षित और शेखर अग्निहोत्री साहब की खूबसूरत फरमाइश। आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस बहुत ही शानदार गाने की तरफ। जहाँ तक मुझे याद है अमित कुमार साहब की आवाज़ में होगा ये गाना और मिथुन दा पर फिल्माया गया है।
1: सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गाने

ये था शानदार गाना ब्रिजेश दीक्षित और शिखर अग्निहोत्री साहब का पसंदीदा गाना। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ दोस्तों अगले फरमाइशी गीत की तरफ, और जो कि फरमाइश हमारे पास आई है वो है श्रेयश पाठक, अर्चना पाठक और लिटिल देवीना की तरफ से। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। हमेशा इनके पास एक ऐसा गाना ज़रूर होता है श्रेयश भाई के पास जो कि शो की शान बढ़ा देता है। तो आइए सुनते हैं यह खूबसूरत गीत जो कि देवानंद साहब पर फिल्माया गया है और उनका साथ दिया है वैजंती माला ने पर्दे पर। बाकी बातें आपके साथ करता हूँ इस बात के बाद कि आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की इसमें आवाज़ें आप सुनेंगे, अदाकारी होगी देवानंद साहब की।

एज ऑलवेज श्रेयस साहब की तरफ से जो फरमाइश आती है वो यूनिक और बहुत ही शानदार होती है। ये गाना भी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गाना था। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ट्यून्ड इन फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क। और लिटिल देवीना अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी आज का शो। कुछ गाने दोस्तों मैं अब कोशिश करता हूँ शामिल कितने हो सकेंगे, लेकिन एक और शानदार नगमा मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने ये बहुत पसंद किया होगा। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो उसका ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था, तो

0: दोस्तों ये है फरमाइशी गाना जिनकी फरमाइश पर उनका नाम है सलमान रिजवी और नीलू जी और इनके साथ साथ शेखर अग्निहोत्री, डॉक्टर नीलम अग्निहोत्री और शालिनी सिंह जी। दोस्तों ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ विराज पुरंग साहब और आभा जी को मास्टर विश्रुत के तरफ से भी।
1: पर्वतों से आज मैं टकरा गया
0: साथ साथ समझ

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आ गई हूँ आरजे राधा आप सबसे मुलाकात करने के लिए। सबसे पहले तो फिर से आप लोगों को विश कर दूँ कि हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल शुरू है नए सारी उमंगों के साथ और नए सारी विशेस के साथ और नए सारे प्लान्स के साथ। सो आप क्या क्या प्लान अप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या करना चाहते हैं, किन ख्यालों से किन राहों से गुजरना चाहते हैं, नए साल में नए तरीके से नई चीज़ों को फिर से आजमाना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। सो मैं हूँ आरजे अदिति भारत एफएम पर आप सबसे जैसे कि हर सैटरडे मुलाकात करने के लिए आती हूँ सुबह के 10 बजे से 11 बजे के बीच, और मुझे यूं ही सुनते रहने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर मुलाकात का अंजाम बहुत ही खूबसूरत होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप यकीन रखते हैं या नहीं, नया साल जो शुरू हुआ है नई सारी चीज़ों को लेकर आई है हमारे ज़िंदगी में, नई उमंगों को लेकर आती है, और उन्हीं उमंगों के साथ हमें जीना है और पुरानी सारी बातों को फिर से थोड़ा थोड़ा सोचना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो सोचना है। सोचते रहिए उन सारे सवालों को, उन सारे जवाबों को जो पिछले कई सालों से आपने खोजने की कोशिश की होगी या खोजना चाहा होगा या उसे नज़रअंदाज करना चाहा होगा। सो सवालों के बीच हम घिरे से रहते हैं और उन सारी चीज़ों को हम फिर से दोहराते हैं कभी कभी कि जिनको हम भुलाना चाहते हैं। दुनिया इतनी बड़ी बढ़ जाएगी मालूम ना था, वो बाबू से बेवफा बन जाएंगे हमें मालूम ना था। हाँ, ऐसे कई रिश्ते हैं जो बेवफा करार दिए गए होंगे नए साल में, लेकिन कुछ ऐसे भी

रिश्ते हैं जिन्हें हम बहुत खूबसूरती से संजो कर रखना चाहते हैं। सो सोचते सोचते ऐसे फासलों से, ऐसे फैसलों से हम गुजरते हैं कि बहुत कुछ सोचना होता है। सो हम उनके लिए पागल हो जाएंगे, मालूम न था जो चेहरा, अपना चेहरा हमारी आंखों में देखते थे, वो अपना चेहरा हमारी आंखों में देखते थे। सोचिए तो जरा, वो बाबू जो बेवफा बन गया, वो कभी हम अपने चेहरे को हमारी आंखों में देखते थे। हाँ, ये प्यार के दस्तावेज लेकर हर जयादिति आती है हर सैटरडे 10 AM to 11 AM के बीच भारत FM पर। सो भारत FM को सुनते रहिए और बहुत सारे शेयर्स, लाइक्स और करते रहिएगा, क्योंकि भारत FM में आप जब RJ अदिति को सुन रहे हैं, उसे Spotify में भी सुन सकते हैं एंड हबहॉपर में भी सुन सकते हैं, क्योंकि शी इज़ अ पॉडकास्टर टू। सो हम मुझे भूलना सुनना ना भूलिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स में आ रही हूँ। यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिन्हें आप बहुत बखूबी से सुन सकते हैं, बस यूट्यूब ऑन करना होता है और RJ अदिति को सुन पाएंगे। स्पॉटिफाई में आप लोग सुन ही पाएंगे दिल की बात बाय राधा सिंह। सो स्पॉटिफाई मेरे चैनल का नाम है दिल की बात। दिल की बात में राधा सिंह जरूर मिलेगी आप सबको। सो शुक्रिया, और मैं थोड़ी सी ही देर के बाद फिर से वापस लौटती हूँ। आप बस यूं ही बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा कहीं नहीं, भारत FM में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे हर सैटरडे आप सुनते हैं, आई एम सो ग्लैड। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, यूं ही बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आती हूँ बहुत जल्द, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आपको यहीं पे प्यार के दस्तावेज सुनने को मिलेगा RJ अदिति के साथ। प्लीज प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड जाइएगा कहीं नहीं, कुछ बेहतरीन से बेहतरीन गाने सजा कर लेके आई हूँ अपने डाली में। सो बी ट्यून्ड, सब मिलती हूँ थोड़े से ही छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं।

गुड मॉर्निंग वंस अगेन, आ गई हूँ मैं आरजे अदिति भारत एफएम पर प्यार के दस्तावेज आप सबके सामने पेश करने के लिए। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर सैटरडे आप लोगों से मिलने के लिए मुझे आना ही होता है 10 AM to 11 AM भारत एफएम पे। और भी कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हें सुनते रहिएगा, क्योंकि उसमें से एक और है सुनने के लिए, वो है शुक्रवार 7 से 8 बजे की छुक्कून। वो बंगाली प्रोग्राम है जो कि मेरी ही पेशकश है, सुनते रहिएगा। मुझे पता है आप लोग मुझे सुनते हैं, बखूबी से सुनते हैं, इसलिए तो बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ यूं ही बने रहिए। आज का जो विषय है सोचना, कितनी तरह से हम कितनी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, बीते कल के बारे में, रिश्तों के बारे में, फासलों के बारे में, फैसलों के बारे में, यकीन मानते हैं ना। बीते कल जो हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, बहुत कुछ जानना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, उन पलों को हम फिर से जीना चाहते थे, उन पलों के बारे में हम सोचते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता है, जिन पे हमारी बस नहीं चलती है, उन सारी चीजों को भी हम सोचना चाहते हैं। कैसे भूल जाऊं उसे जिसे दिल में बसाया था, बेवफाई तो उसने की, हमने तो बस प्यार किया था, हमने तो बस प्यार किया था। राहों में हाथ उसने छोड़ा, हमने तो हाथ पकड़ा था, हमसे ही कुछ छूट गया शायद कि उन्होंने हमें बीच समुंदर में छोड़ा था, उन्होंने हमें बीच समुंदर में छोड़ा था। हाँ, ऐसे ही कुछ सोच से गुजरते हुए हम जब चाय की प्याली में चस्की लगा रहते हैं, डूबने की कोशिश करते हैं बिस्किट के साथ, तो काफी चीजें याद आती है कि नहीं। थोड़ी सी चाय पीते पीते हम लोग सोचते हैं कल क्या करना होगा, परसों क्या करना होगा, इस महीने के अंत तक क्या करना होगा, और 6 महीने बाद हमें क्या करना होगा, और हम अगर अपने देश लौट जाएं तो हमें क्या करना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं। सॉल्यूशन निकालना ही हमारा काम होता है, लेकिन हर समस्या का, हर सोच का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। बीते कल के बारे में हम बहुत कुछ सोचते हैं कि चलो अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा ना हुआ होता, या ऐसा कर सकते थे पर ऐसा किया क्यों नहीं हमने। हाँ, बहुत सारी बातें होती है बीते कल में, जानने के लिए सीख भी मिलती है बाय द वे। हाँ, बहुत सीख भी मिलती है हमारे मिस्टेक्स से। उन बीते कलों में, बीते पलों में हम जब सोचते हैं कि हमने अगर अच्छे तरीके से कुछ किया होता तो बहुत रास्ता आसान हुआ होगा, नहीं, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हासिल करना, सब कुछ हासिल करना हमारे बस की बात नहीं होती है। कैसे करें, कैसे कहें कि हम उन बीते पलों को रीवाइव करना चाहते हैं, रीजीना चाहते हैं। हाँ, रीजीना, क्योंकि हम दोबारा उसे जीने के लिए हम उस बीते पलों में लौट कर जाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। मैंने खुद को ही खुद से उसके लिए खोते हुए देखा है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है वो, मैंने उसके बगल में बैठकर उसे सोते हुए देखा है। वो कहती है कि शराब गम भुला देती है, और मैंने उन्हें नशे में धुत रोते हुए देखा है। उफ, क्या शायरी है ना। बीते पलों को भुलाने के लिए कभी कभी हम लोग कुछ एक्सटर्नल चीजों की मदद ले लेते हैं। हमारी यादों के अलावा भी वो एक्सटर्नल चीजें हमारे यादों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और आगे हम बहुत अच्छी तरह सोच पाए इसके लिए भी हमें तैयार करते हैं। हमारे आंसुओं को हम खुद जो बहा लेते हैं, खुद ब खुद उनमें जीने की जो क्षमता होती है, उनमें हम जो सोचते हैं, बहाते हैं, तो फिर हम और जी जाते हैं। तो बस यही कहना था कि सोचिए, बहुत सोचिए, अपने प्लान्स कामयाब बनाते रहिए। आती हूँ बस छोटे से ब्रेक के बाद।
जाइएगा कहीं नहीं, मैं यहीं पे हूं ना, यहीं पे।

गुड मॉर्निंग वंस अगेन, मैं हूँ आरजी अदिति। भारत एफएम रेडियो पे स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। एंड दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज प्यार के दस्तावेज में हम नए से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है सोचना। आप क्या क्या सोचते हैं, आप क्या क्या महसूस करते हैं, आप क्या क्या सोचना नहीं चाहते हैं, क्या महसूस करना नहीं चाहते हैं, किन बातों को भुलाना चाहते हैं, किन बातों को याद रखना चाहते हैं, बस इसी पिटारे को लेकर आती है हर सैटरडे 10 AM to 11 AM आरजी अदिति प्यार के दस्तावेज में। प्यार के दस्तावेज को सुनना ना भूलिए क्योंकि हर सैटरडे आप लोग को ट्यून इन करना होता है भारत एफएम पे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम होते रह रहे हैं, उन्हें भी सुनते रहिएगा क्योंकि प्यार के दस्तावेज उनमें से एक है, बहुत ही आप लोगों की वजह से पॉपुलर है कि नहीं, मानते हैं या नहीं। एंड आप लोगों को ये भी बताना था कि फ्राइडे शाम को शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच आप किचुकुन भी सुन सकते हैं। किचुकुन एक बंगाली प्रोग्राम है, सो धीरे धीरे उसे भी अपना बनाइएगा। हम बदलते रिश्तों में जब हम सोचते हैं बदलते रिश्ते क्यों बदल जाते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? वो रिश्ते जिनके जो कभी आपके करीब हुआ करते थे, आपको पता ही नहीं था कि वो इंसान या वो रिश्ता कभी टूट जाएगा, आप कभी सोचते ही नहीं है क्योंकि सोचना चाहते नहीं है। बहुत सारी बातें होती है रिश्तों में टूटने में, रिश्तों की दरार आने में, क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से ही बजती है। चाहे किसी भी तरह का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, सहेलियों का रिश्ता हो, कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी हम दूर हो जाते हैं, कभी कभी हम चाहते हैं कि दोबारा करीब आए, और कभी कभी ये भी चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी से दूर ही रहे तो अच्छा है। ऐसा होता है, रिश्तों को बदलते देर नहीं लगती। कुछ रिश्तों की उम्र होती है और कुछ रिश्तों को हम बहुत दिल से निभाना चाहते हैं। पता होता है कि बस ये छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, फिर भी हम बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। चाहते थे तेरे रंग में रंगे, चाहते थे तेरे रंग में रंगे, अफसोस तेरे रंग फरेबी लगे, अफसोस तेरे रंग फरेबी लगे। झूठी दुनिया के ख्वाब मुझे असल जिंदगी में धोखे लगे, झूठी दुनिया के ख्वाब मुझे असल जिंदगी में धोखे लगे। हाँ, जब जिंदगी में धोखा मिल जाता है रिश्तों से, तब हम थोड़े से पीछे हट जाते हैं, कदम अपने पीछे कर लेते हैं। लेकिन हम बहुत कुछ उस रिश्तों को ऑलरेडी दे चुके होते हैं, बचाने की कोशिश में फिर से दोबारा एक बार फिर से सोचते हैं कि बच जाए हमारा ये रिश्ता। लेकिन हम समटाइम्स बचा पाते हैं और समटाइम्स नहीं बचा पाते हैं। बस में गलती की कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है। कुछ कुछ रिश्तों को आगे छोड़कर आगे निकलना होता है, ठीक है। सो प्लीज सुनते रहिए क्या प्यार के दस्तावेज सैटरडे 10 AM to 11 AM के बीच आरजे अदिति को भारत एफएम पर। भारत एफएम पे सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वही आरजे अदिति मिल जाएगी। और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप सुन सकते हैं, जिसका नाम है स्पॉटिफाई दिल की बात बाय राधा सिंह्स, एंड हबा पर अगेन दिल की बात बाय राधा सिंह्स, और YouTube चैनल में भी आरजे अदिति को सुन सकेंगे। सो कीप स्टे ट्यून्ड हमारे साथ, और जो प्यारे प्यारे गानों को मैं सजा कर लेकर आई हूँ उसे भी सुनते रहिए और अपना फीडबैक देती रहिए। आपकी फरमाइशों को मैं इंक्लूड करूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस किए तो मैं आप लोगों के फरमाइशें नोट डाउन करूँगी और उन गानों को मैं यहाँ पे प्ले करूँगी। आप बस मुझे अपना फरमाइशी गीत भेज दिया कीजिए क्योंकि हर शनिवार को जब मैं मिलने आऊँगी आप लोगों से ऑनलाइन इस भारत एफएम पर, तो आप लोगों के गाने मैं प्ले कर दिया करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, फिर से मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक तो लेना बहुत ज़रूरी है ना। मिलती हूँ अभी अभी अभी, अभी।

गुड मॉर्निंग। प्यार के दस्तावेज के आखिरी पड़ाव पे है हम, पता ही तो है। आरजे अदिति यही भारत एफएम पे आती है आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उसे आप लोगों से बातें करने के लिए। सो प्यार नहीं तो आदत ही समझ लो। वो रो रहे थे मुझे छोड़ने के बाद, हुस्न और मोहब्बत के दरमियां है फासले, मालूम हुए ये दिल तोड़ने के बाद, मालूम हुए ये दिल तोड़ने के बाद। हाँ, किसी शायर ने तो जरूर लिखा है, ये मेरी लिखावट तो है नहीं, पर मुझे पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है कुछ कुछ ऐसे लाइंस जो आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। इसी प्यार के दस्तावेज में प्यार की बातें होती रहती हैं, दिल फेक बातें होती हैं और कुछ भूले बिसरे बातें भी होती हैं। फासले तो बहुत है पर मोहब्बत कम तो नहीं, फासले तो बहुत है पर मोहब्बत कम तो नहीं। ऐसे ही बहुत कुछ कहने के लिए हम मिलते हैं प्यार के दस्तावेज में। आरजे अदिति को यूं ही सुनते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड रहिएगा हर सैटरडे, क्योंकि उसे बहुत कुछ कहना होता है, आप लोगों से मिलना होता है। तुमसे मिलने के लिए मीलों का नहीं सिर्फ पलकों का फासला तय करना पड़ता है, तुमसे मिलने के लिए मीलों का नहीं सिर्फ पलकों का फासला तय करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पलक झपकते ही सैटरडे आ जाता है, और सैटरडे को आरजे अदिति को आप लोग सुन पाते हैं प्यार के दस्तावेज में। बहुत बहुत इंतजार करती है 7 days का, 7 दिनों का उसे इंतजार होता है आप लोगों से मिलने के लिए। आज का टॉपिक जैसा कि था कि सोचना, आप किन किन बातों के बारे में सोचते हैं। हमारे नए साल में हमें बहुत कुछ सोचना है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे, अच्छी चीज़ों को इख्तियार करेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचेंगे तो हम अच्छी चीज़ें कर भी तो पाएंगे। फासलों से हम करीब आ सकते हैं, क्योंकि कुछ फासले बढ़ जाते हैं ज़्यादा सोचने के लिए। सोचना अगर है कम, ज़्यादा नाप तोल कर सोचना पड़ता है। हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप अगर थिंकिंग ही ना करो, आप अगर प्लानिंग ही ना करो, आप अगर उसे संजीदा तरीके से ना सोचो तो फिर भी तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहने वाली बात यह है कि सोच समझ कर चलो। हाँ, सोचना बहुत ज़रूरी है। पलक झपकते ही हम कितनी दूर, कितने मीलों दूर अपने किसी भी जगह पे हम पहुंच जाते हैं। बस हमें ईश्वर ने जो दिमाग दिया है, सोच दी है, हमें दिल दिया है, हमारे अस्तित्व दिया है, उसके बलबूते पे हम सोचते हुए कहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बस इन्हीं सोच को लेकर हम बहुत कुछ सोच जाते है ना, बीते कल के बारे में, बीते रिश्तों के बारे में, आने वाले रिश्तों के बारे में, फासलों के बारे में, फैसलों के बारे में। यस, इसी प्यार के दस्तावेज में बहुत सारी बातें होती है इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स पे, और इन्हीं को बात करने के लिए आती है आरजे अदिति प्यार के दस्तावेज में। भूलिएगा नहीं, हर सैटरडे आप लोगों को ट्यून इन करना होता है भारत एफएम पर। भारत एफएम पर ही मिलेगी आरजे अदिति। सो न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयों के साथ और शुभकामनाओं के साथ मुझे आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि फिर अगले हफ्ते फिर मिल पाऊंगी ना आप लोगों से। तो यूं ही मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, और नव वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आरजे अदिति अब विदा लेना चाहती है, क्योंकि प्यार के दस्तावेज़ को फिर से संजो कर लाना होता है। उसे 7 दिन का ही वक्त मिलता है और आप लोगों से साझा करने के लिए बहुत सारी बातें होती है। तो सोच कर देखिएगा कि नए साल में आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैंने तो अपना रेजोल्यूशन बना लिया है कि एवरी सैटरडे को आप लोगों से मिलना है मुझे भारत एफएम पे। आप लोगों से मिलने के लिए मैं हर सैटरडे आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक
एंजॉय कीजिए भारत एफएम को। शुक्रिया।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे?

0: भारत एफएम।
1: इदम मम भारत एफएम।
2: दिस इज माय भारत एफएम।
3: हे आहे माझे भारत एफएम।
4: ये है मेरा भारत एफएम।

कैफी आसमी के खूबसूरत बोल, मदन मोहन का म्यूजिक, रफी साहब की आवाज, फिल्म थी हकीकत। आदाब मेरे अजीज दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी का आईना में, यानी कि प्रोग्राम फरमाइश में। आज हम उन नगमों की दास्तां सुनेंगे जो मैं से शुरू होते हैं। ये सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशों, हमारे दुख, हमारी जीत, हमारी कहानियां हैं। चलिए शुरू करते हैं संगीत में सफर। रफी साहब से हमने आज की शाम शुरू की और अगले पोड़ पर फिल्म थी बागबां, आदेश श्रीवास्तव का म्यूजिक, सिंगर्स थे अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक और समीर साहब के बोल। मैं यहाँ तू वहाँ।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा हाल।

What a haunting, mesmerizing song by Amitabh Bachchan and Alka Yagnik, Baagbaan से. बागबान अपने ज़माने की अगर हिट फिल्म थी तो 1970 में चेतना ने भी हम लोगों को कुछ ये सिखाया कि थीम जो है बोल्ड होना चाहिए. द फिल्म वॉज वेरी बोल्ड फॉर इट्स टाइम डीलिंग विद सोशल स्टिग्मास एंड 1970 में चेतना रिलीज हुई थी. इस अगले गीत की फिलॉसफी बड़ी मज़ेदार है. इसकी फिलॉसफी है रेजिलियंस, स्टेइंग ट्रू टू वनसेल्फ एट एवरी टर्निंग पॉइंट इन पॉइंट ऑफ लाइफ. अ वेरी हॉन्टिंग ट्रैक बाय मुकेश, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. कि मैं तो हर मोड़ पर तुझे ही ढूंढता रहा, मैं तो हर मोड़ पर तुझे ही ढूंढता रहा, जिंदगी की धूप में साया ढूंढता रहा. रास्ते बदलते रहे पर मंजिल वही रही, रास्ते बदलते रहे पर मंजिल वही रही, मैं अपनी ही तन्हाई में एक राही ढूंढता रहा. लीजिए सुनिए, मैं तो हर मोड़ पर

तो दोस्तों ये तो रहा 1970 की फिल्म चेतना का एक गीत मुकेश की सुरीली आवाज़ में। एक गलती से मिस्टेक हो गई जो कि मैंने बोल दिया कि ये कॉम्पोजिशन LP की थी। जी नहीं दोस्तों, ये इस गीत के बोल लिखे थे नक्श लालपुरी ने और म्यूज़िक डायरेक्टर थे सपन जगमोहन। चलिए वापस मदन मोहन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 1962 में फिल्म मनमौजी ने मदन मोहन यूज्ड द वर्ड्स ऑफ अ वेरी फेमस शायर राजेंद्र कृष्ण टू शो द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हार्ट व्हेन यू लॉक आइज विथ अनदर। मैं तो तुम संग नैन मिला के सब कुछ हार गई, दिल की हर एक धड़कन तेरे नाम पे वार गई। लीजिए सुनिए, साधना पे दर्शाया गया गीत फिल्म मनमौजी में, 1962 की फिल्म थी ये।

तो ये तो रहीं लता मंगेशकर, और अगले मोड़ पे आ रहे हैं वापस मुकेश। कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक। 1965 में आई थी फिल्म हिमालय की गोद में। माला सिन्हा एक ख्वाब जैसी दिखती हैं इस मूवी में, और जी हाँ, इससे ज़्यादा इस गीत का क्या इंट्रोडक्शन मैं दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुरीला नगमा है।

ख्वाबों से प्यार करना तो शायरों का नसीब होता है, और शायर भी ऐसे होते हैं कि खुद को कभी बढ़ाते नहीं हैं। देखिए, अगले दो गीतों में एक तरफ एक बदनाम शायर है और दूसरी तरफ एक ऐसा शायर है जो खुद ही कह रहा है कि मैं शायर तो नहीं। चलिए ये दो गीत सुनिए। पहला गीत है फिल्म नमक हराम से और दूसरा गीत है फिल्म बॉबी से। दोनों में शायरों की एक ही उलझन है और एक ही तमन्ना है।

तो ये तो रहे आनंद बख्शी के बोल बैक टू बैक गीतों में, पहले नमक हराम में और फिर बॉबी में।

कब तक जिंदगी का साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, किसी को क्या मालूम। पर दोस्तों, जब श्वेतल देसाई साहब की फरमाइश आती है तो हम दोनों को ये अग्री कर लेना चाहिए कि वो बहुत ही खूबसूरत गाने फरमाइश कर लेते हैं। आप सबका भारत एफएम पे बहुत बहुत स्वागत। यह है प्रोग्राम फरमाइश। कोलंबस, सिंसिनेटी, फेयरबॉर्न, लवलैंड, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, सरे, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, सब लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत। अब देखिए अगले मोड़ पर क्या खूबसूरत नगमा है, क्योंकि अगर आपने ये लाइफ फिलॉसफी नहीं अडॉप्ट की है तो फिर तो मुश्किल है। अच्छा।

जयदेव यूज द जलतर अंग सो ब्यूटिफुली इन दिस मूवी. अगले मोड़ पर आपको श्वेतल देसाई के बाद प्रकाश पाई की फरमाइश सुनाता हूँ. बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक ने यह गीत गाया था. फिल्म का नाम था वादा. 2011 में रिलीज हुई थी अमीषा पटेल और जायद खान के साथ. मूवी तो ज़्यादा चली नहीं, पर यह गीत अगर आपके जहन में नहीं उतरता है तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं इश्क उसका, वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी. सही कहा प्रकाश साहब.

मैं चैन उसका वो तिश्नगी है मेरी। दोस्तों आपको एक नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, इसका तिश्नगी का लिटरल मीनिंग है थर्स्ट या पार्च्डनेस, जो फिजिकल थर्स्ट होती है, द नीड टू ड्रिंक वाटर, द प्यासापन जिसको कहते हैं। बट ऑफ कोर्स द मेटाफोरिकल मीनिंग इज द डीप डिजायर, द यर्निंग, द क्रेविंग, द एम्बिशन, आरजू, तलब, ख्वाहिश। तिश्नगी, तिश्नगी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत फरमाइश आई हुई है, और ये फरमाइश आई है मुक्ता राय से। क्योंकि अगर आपको तिश्नगी है तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ, राहत फतेह अली खान आपको समझाएंगे।

0: मैं तेनु समझावा कि मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने हैं। खैर, मुक्ता राय की फरमाइश से आगे बढ़ते हैं चंपा भरद्वाज की फरमाइश की तरफ। बहुत ही मेमोरेबल नगमा।
1: मैंने

गुलजार और सलील चौधरी के मास्टरपीस से बढ़ते हैं हिमेश रेशमैया की तरफ, जिन्होंने ही यूज्ड अ सूफी रॉक ब्लेंड टू परफेक्शन इन दिस सॉन्ग। नमस्ते लंदन 2007 में आई थी और इस गीत की फिलॉसफी यह है कि लॉयल्टी टू वंस रूट्स एंड अ लव दैट ट्रांसेंड्स फिजिकल डिस्टेंस इज द की टू लाइफ। राहत फतेह अली खां और कृष्णा ब्योरा ने इस गीत को गाया था कि फासले मिटा सके ना हमारी मोहब्बत को, हर सांस में तेरी खुशबू, हर पल तेरा ही एहसास है, मैं जहां रहूं। फरमाइश है सुधीर मटानी साहब की।